सुप्रभात एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें।

कार्यक्रम खेती की बातें सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कृष्णा कावेरी का प्यार भरा जोहार। श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और हमारे किसान भाई बहन इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 ईस्वी में शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो किसानों को बीज, उर्वरक जैसे कृषि के लिए उपयुक्त सामान खरीदने के लिए 3 लाख रुपए का सस्ता ऋण लगभग 4% वार्षिक ब्याज के दर से प्रदान करती है। श्रोताओं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को सस्ता ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज दर लगता है तथा समय पर भुगतान करने से 3% की सब्सिडी भी मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाता है। किसान भाई बहनों, इस योजना के तहत बिना गारंटी लोन मिल जाता है। 1.60 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी सुरक्षा या कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। श्रोताओं, आसान ऋण सीमा के तहत आपकी कृषि योग्य भूमि और फसल के आधार पर ऋण सीमा तय की जाती है। किसान भाई बहनों, बीमा कवर के तहत किसान क्रेडिट धारकों को फसल बीमा के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में 50,000 रुपये तक और जोखिमों के लिए 25,000 रुपये तक का बीमा कवर भी मिलता है। श्रोताओं, ऋण का उपयोग न केवल खेती बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि उपकरणों की मरम्मत के लिए भी मिलता है। श्रोताओं, किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा लोन लेने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। यह कृषि विभाग उत्तराखंड की एक बहुत ही सरल और सुविधाजनक योजना है। श्रोताओं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि का विवरण रिकॉर्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कृषि विभाग उत्तराखंड के अनुसार बैंक का आवेदन फॉर्म। किसान भाई बहनों, क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए आप अपने निकटतम बैंक शाखा जैसे SBI में जाकर आवेदन कर सकते हैं या जन समर्थ पोर्टल या एग्री एशिया वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्रता इस प्रकार होगी। किसान बटाईदार या पट्टेदार किसान या जो कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन करते हों, वे सभी इस योजना के पात्र होंगे। किसान भाई बहनों, इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न होता है। रेडियो दोस्त कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज का चिंतन मोहनदास करमचंद गांधी जी के अनुसार, आपको वह परिवर्तन स्वयं बनाना होगा जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना में भक्ति रचनाएं। स्वर है चंद्र आत्मा का।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के गायक हैं चंद्र आत्मा और साथी।

चंद्र आत्मा के स्वर में आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

राजा प्रतापधन उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

अधिक स्नेह जनाय। सुनु सती भाव कहूँ मही पाला, इहाँ बसत

0: कहे कि अमित आकर जे बसा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजलें। फनकार होंगे पंकज उदास। 7:20 का हमारा समय होता है लोक गीतों का और 7:35 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम सूरांजलि। 7:50 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण होता है। सुबह के 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 का समय होता है प्रादेशिक समाचार का, जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर श्रोताओं आप आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 9:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से गाने। 9:30 का हमारा समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 11:00 और दोपहर 12:00 श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 10:05 का समय होता है कार्यक्रम 11:05 का समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का और दोपहर 12:05 पर आप सुनते हैं भावगीत। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत प्रसारित किया जाएगा। दोपहर के 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2:00 मिड डे न्यूज़, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3:00 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा। 3:30 पर सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे और 3:45 का समय होता है लोक गीतों का। संध्या 4:00 एवं 5:00 समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं नाटक के आरोपक। 4:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। संध्या 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा। 5:30 पर कल कारखाने कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संध्या 7:00 जिले प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आज कल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम जिज्ञासा। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत लेकर हम आपके साथ होंगे। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 9:00 न्यूज़ एट नाइट आकाशवाणी दिल्ली से ही प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनते हैं 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। विशेष कार्यक्रमों की ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फनकार पंकज दास की गाई गजलें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस सुन रहे हैं सुगम संगीत में गजलें। फनकार हैं पंकज उदास।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई गजलें। इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

0: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, पर आरोग्यम केयर हॉस्पिटल है तैयार अपनी 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा और पैथोलॉजी सर्विस के साथ, क्योंकि इमरजेंसी के नाजुक पलों की कीमत समझते हैं हम।
1: हर इमरजेंसी में आए आरोग्यम केयर हॉस्पिटल एट दयाल सेंटर, शेरे पंजाब चौक, आदित्यपुर। आपकी मुस्कान हमारी पहचान।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। लोक गीतों के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरिवंश प्रसाद और साथियों से अंगे का गीत।

0: शहरवा में केंद्र खुलल है
1: गांव गांव शहरवा में केंद्र खुलल है गांव गांव।

0: परिवार वाटो सुख के या धरवा
1: परिवार वाटो
0: सुख के या धरवा।

0: आगे बढ़ा आगे बढ़ा मजदूर किसानवा तो हमर लागेला
1: आगे बढ़ा आगे बढ़ा मजदूर किसानवा तो हमर लागेला बबुआ के लहैया धनवा तो हमर लागेला बबुआ के लहैया धनवा तो हमर लागेला बबुआ के लहैया धनवा तो हमर लागेला।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अंगिका गीत हरिवंश प्रसाद और साथियों से।

gali

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिवंश प्रसाद और साथियों से अंगिका गीत। इसी के साथ हमारा आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आधुनिक गान राघव चट्टोपाध्याय से। इसी के साथ हमारा आज का सुरांजलि कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, गर्भावस्था और जरूरी पोषक तत्व। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर निशा यादव, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, गर्भावस्था किसी भी महिला के लिए एक खूबसूरत पल होता है। गर्भ धारण करने के बाद जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां महिलाएं कर जाती हैं या फिर खान पान में उनका सही नहीं रहता है, जिसका गंभीर परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। आज हम बातें करेंगे गर्भावस्था और जरूरी पोषक तत्व इस विषय पर। इस विषय पर बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा यादव। डॉक्टर साहिबा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान क्या जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो महिलाओं को जरूर लेना चाहिए?
2: गर्भावस्था के दौरान जब मरीज हमारे पास आती हैं, तो उनका जो रेगुलर चेकअप होता है वो तो हम करते ही हैं, साथ में जो जरूरी पोषक तत्व है वो उसका इम्पोर्टेंस बताते हुए उस पे कितना ध्यान देना है उस पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। जैसे जरूरी पोषक तत्व जो कि हर एक मनुष्य को लेना है, वो गर्भावस्था में और भी जरूरी हो जाता है। और वो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिंस और फाइबर्स।
1: जो बैलेंस डाइट के रूप
2: जो बैलेंस डाइट जो संतुलित आहार होता है वही पोषक तत्व है। वो संतुलित आहार अगर महिलाएं अच्छी तरह लेती रहें तो उन्हें ना तो एनीमिया होगा ना ही किसी तरह की कमजोरी होगी और वे एक हृष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म देंगी।
1: आमतौर पर किस तरह का खाना पीना होना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो?
2: जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तो पहले 3 महीने में उन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे जब वो पहला बच्चा उनका होने वाला हो तो उस समय उतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको लगता है कि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। और इसके चलते उन्हें जैसे हर एक खाना महकेगा, उल्टियां लगेंगी। हाँ। इसके चलते वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देंगी और उल्टी के डर से कुछ भी मुंह में नहीं डालेंगी, जिसके कारण क्या होता है उन्हें फिर पानी चढ़ाना पड़ता है, विटामिन की सुई देनी पड़ती है। तो महिलाओं को यही सलाह दूंगी मैं कि कितनी भी उल्टियां हो, भूख न लगे, वो डॉक्टर से जाके सलाह लें, उल्टी की दवाई लें, जो भी दवा डॉक्टर लिख रही है उसे रेगुलरली लें, जिसके कारण की उल्टियां भी बंद हो जाएंगी, भूख भी लगेगी और रेगुलर इंटरवल्स में मतलब एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में कुछ न कुछ वो हमेशा खाती रहे।
1: पोषक तत्वों के अलावा और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं स्वस्थ रहें?
2: जैसे कि पहले 3 महीना में सावधानियां ज्यादा बरतनी चाहिए। जैसे अगर भूख नहीं लग रही है, उल्टियां हो रही हैं, तो उल्टी रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, उन्हें रोका जाए, पौष्टिक आहार तो लिया ही जाए, साथ में ज्यादा जर्नी अवॉइड करें, भारी सामान न उठाएं, नॉर्मल जो घर का काम है वो कर सकती है।
1: शहरों में तो ये देखा जाता है कि महिलाएं जागरूक होती है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगी ताकि जब वो गर्भ धारण करे तो अपना और अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से देखभाल कर सके?
2: कि ग्रामीण महिलाओं को तो मैं यही सलाह दूंगी कि वो जब गर्भ धारण करें तो अपने साथ अपने बच्चे के बारे में भी सोचें, पौष्टिक आहार पे विशेष ध्यान दें और सही मात्रा में खान पान करें। जैसे सुबह नाश्ता किए तो उसके बाद 4-5 घंटा गैप हो जाता है, बच्चों को खिलाएंगी, पति को खिलाएंगी, अपने खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी, वैसा नहीं होना चाहिए। पहले अपने ऊपर ध्यान दें क्योंकि अपने अंदर पल रहे बच्चे पर भी उनको ध्यान देना है ताकि किसी तरह का भी कॉम्प्लिकेशन उन्हें प्रेगनेंसी में नहीं हो।
1: अपने दिनचर्या में उन्हें क्या बदलाव लानी चाहिए जो काम करती हैं घर का महिलाएं? उनमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: उनमें है कि बहुत ज्यादा भारी काम जैसे बोझा ढोना हुआ, जैसे गांव में तो महिलाएं हैं कि लकड़ी चुनेंगी, बोझा ढोएंगी, वो सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। घरेलू काम जैसे कि बर्तन धोना हो, खाना पकाना हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हाइजीन पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहने, उसके बाद अपने अंदरूनी अंगों का भी अच्छे से सफाई करें ताकि जब बच्चा जन्म ले तो बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। और समय समय पर जाके डॉक्टरी सलाह लें। और अब तो हर एक गांव में टेटनस की सुई पड़ती है, आंगनवाड़ी में जाके टेटनस की सुई लें, रेगुलर चेकअप कराएं, जब अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट के लिए कहा जाए उसको फॉलो करें, उसको करें। और फ्री में आजकल तो आयरन कैल्शियम की गोलियां सभी जगह मिलती हैं, उसका सेवन करें।
1: डॉक्टर साहब, आपने जो उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता गर्भावस्था और जरूरी पोषक तत्व। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर निशा यादव, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, पर आरोग्यम केयर हॉस्पिटल है तैयार अपनी 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा और पैथोलॉजी सर्विस के साथ, क्योंकि इमरजेंसी के नाजुक पलों की कीमत समझते हैं हम।
4: हर इमरजेंसी में आए आरोग्यम केयर हॉस्पिटल एट दयाल सेंटर, शेरे पंजाब चौक, आदित्यपुर। आपकी मुस्कान हमारी पहचान।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
4: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
6: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती

0: औद्योगिक क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने घुसपैठ की जांच के लिए बनी केंद्रीय कमेटी का किया समर्थन। प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल को बताया अतुलनीय और ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठक का सिलसिला जारी। आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कामकाज का लेंगे लेखा जोखा। राज्य में इबोला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रिम्स में विशेष वार्ड तैयार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज और कल आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और जमशेदपुर की TSAF क्लाइंबिंग अकादमी के नीलगिरी स्पीड कप में शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनसंख्या बदलाव की जांच के लिए बनी केंद्र की हाई लेवल कमेटी की तारीफ की है। उन्होंने इसे देश के हित में बड़ा कदम बताया। गिरिडीह में हमारे संवाददाता से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को अतुलनीय और ऐतिहासिक बताया।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है वो बेमिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है और बहुत ही बेहतर। आज देश को शिखर तक पहुंचाने का काम, और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के रूप में जो विश्व के अलग अलग देशों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, सबसे ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है।
0: गिरिडीह के मधुबन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। इसमें शामिल होने पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की नाकामियां जनता तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने पानी बिजली के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र की हाई लेवल कमेटी का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि संताल परगना में आदिवासी आबादी कम होना चिंताजनक है। उन्होंने इस समिति के गठन को राज्य की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों सिलसिलेवार तरीके से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। इस बैठक में गांवों की सड़कों, मनरेगा और पंचायत स्तर की योजनाओं की प्रगति जांची जाएगी। इससे पहले कल शिक्षा और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा ताकि जनता को सीधा लाभ मिले।
2: और विभाग कैसे चल रहा है, क्या काम से कमी बेसी हो रही है, काम क्या जरूरत है, जहाँ क्या चीज छूट रही है, उन सब चीजों को समीक्षा हो रही है ताकि सभी विभाग सरकार तक, आम जनता तक और सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पोखरा व्यक्ति तक सरकार

0: सरकार की बातें पहुंचे, यह सुनिश्चित कराना हो।
1: केंद्र सरकार के बाद अब झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी इबोला वायरस को लेकर अलर्ट हो गया है। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में इसके इलाज के लिए खास तैयारियां की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर है। रिम्स में संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए विशेष वार्ड और जरूरी दवाओं का पूरा इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: मैंने रिव्यू लिया भी है और डायरेक्शन दिया है सदर हॉस्पिटल में और रिम्स में भी कि कुछ बेड को खाली रखा करो, ताकि अगर इस प्रकार की इबोला टाइप का कोई पेशेंट आ जाए तो समुचित उसकी व्यवस्था हम लोग करें।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे रांची में राज्य मंत्री परिषद की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सरकार के कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में युवाओं और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। रांची के सीनियर एसपी ने ग्रामीण एसपी और डीएसपी के साथ बैठक की। बैठक में अपराध नियंत्रण और बकरीद त्योहार की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीनियर एसपी ने थानों में रुके हुए मामलों को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए, साथ ही त्योहार के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के कड़े आदेश दिए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। गोड्डा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिली है। गैस चूल्हा मिलने से महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा है और समय की बचत हो रही है।
3: पहले बहुत जो लकड़ी में खाना बनाते थे धुआं हुआ होता था, अब फायदा होता है गैस में बनाते हैं। मोदी जी के पहल से सबको बहुत सुखी है।
4: अब हो गया, गैस हो गया तो आराम हो गया, हम लोग का भी आराम हो गया है।
1: जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में 2029 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में जमशेदपुर में कोल्हान स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और विधायक सरयू राय ने बताया कि सम्मेलन में संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई।
5: संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। सबको निर्देश कार्यकर्ता को दिया गया है, गांव स्तर पर और पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर और ऐसे आपका जिला स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना है और फिर हम लोग ऐसे पूरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेंगे।
1: रांची में सड़कों पर अड्डाबाजी और नशा करने वाले युवकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर सदर एसडीओ कुमार रजत ने लोबाडी से दुर्गा सुरेन चौक तक जांच अभियान चलाया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर जुटे युवकों को कड़ी चेतावनी दी गई। प्रशासन ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सरायकेला के मशहूर छऊ गुरु तपन कुमार पटनायक को बड़ी सांस्कृतिक जिम्मेदारी मिली है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उन्हें ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सदस्य बनाया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। इस उपलब्धि से राज्य के कला जगत में खुशी का माहौल है। मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आज और कल आंधी पानी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रांची में 29 मई से तापमान में कमी आएगी। इससे पहले कल गढ़वा 44 डिग्री पारे के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा। जमशेदपुर के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन क्लाइंबिंग अकादमी ने IMF नीलगिरी स्पीड क्लाइंबिंग कप में शानदार प्रदर्शन किया है। अकादमी के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण समेत कुल 6 पदक जीते हैं। अंडर 17 में सुदर्शन मुर्मू और अंडर 13 वर्ग में नीरज महतो ने सोने का तमगा हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्र सरकार द्वारा घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, धार्मिक स्तर पर जनसंख्या का संतुलन क्यों बिगड़ा, जांचेगी हाई लेवल कमेटी। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, CM एक्सीलेंस स्कूल

की संख्या 5000 करें। प्रभात खबर के अनुसार खूंटी के जोबे से निकलकर भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पहुंचे निखिल बारला। दैनिक जागरण लिखता है कल बकरीद 131 ईदगाहों व मस्जिदों में होगी नमाज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने घुसपैठ की जांच के लिए बनी केंद्रीय कमेटी का किया समर्थन। प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल को बताया अतुलनीय और ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठक का सिलसिला जारी। आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कामकाज का लेंगे लेखा जोखा। राज्य में इबोला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रिम्स में विशेष वार्ड तैयार। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज और कल आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और जमशेदपुर की TSAF क्लाइंबिंग अकादमी का नीलगिरी स्पीड कप में शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, सुबह का वक्त बड़ा अजीब होता है। यह हमारे सामने पूरी जिंदगी को एक नई उम्मीद के साथ रख देता है, और अगर इस उम्मीद में संगीत घुल जाए तो दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है।

जहरीला इंसान, आपने सुना इस फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, फिल्म हीरा पन्ना से। नगमा निगार है आनंद बख्शी, मौसिके राहुल देव बर्मन की है और ये आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

और हम लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम के आखिर में ये गाना फिल्म दोस्ताना से। आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की है, शब्दकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए फिल्म दोस्ताना के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
3: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता होगी 1200 किलोवाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे और राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं सुरंजना लेकर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान,
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
0: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरंजना। श्रोताओं, कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म के गाने, और आज की फिल्म है हिना। दरियाए झेलम के बहते पानी की गूंज, पहाड़ों की ठंडी हवा और सरहद के पार धड़कता एक मासूम दिल। सुनवाते हैं फिल्म हिना का सदाबहार गीत।

आप सुन रहे हैं फिल्म हीना का गीत। श्रोताओं, जब मोहब्बत परवान चढ़ती है तो अपने साथ खुशियां लेकर आती है, लेकिन जब वही मोहब्बत सरहदों की बेड़ियों, वतन के फर्ज और अपनों की जुदाई के बीच फंस जाती है तो दिल से सिर्फ एक ही चीख निकलती है,

0: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना। दोस्तों, कश्मीर की वादियों में बहती नदियों के किनारे अपनी ही धुन में मगन रहने वाली एक लड़की, जिसके दिल में ना कोई चालाकी है ना ही कोई सरहद की दीवार, बस वो प्यार बांटना जानती है, बिल्कुल मेहंदी के उस रंग की तरह जो दूसरों के

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आरोग्यम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुनिए आज रात 8 बजे आपके साथ होंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक।
1: श्रोताओं, जब दिल का दर्द आंखों से आंसू बनकर भी नहीं बह पाता तब वो कागज पर स्याही बनकर बिखर जाता है। पुराने दौर में जब दूर बैठे अपनों का हाल लेने के लिए एक ही जरिया हुआ करता था, ये था चिट्ठी। एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लिखने वाले के जज्बात और उसकी रूह बंद होती थी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरंजना में एक ही फिल्म हिना के गाए गाने, फिल्म हिना के गाने गाए गाने, माफ करेंगे, अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से गीत, और आज की फिल्म थी हिना। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर थोड़ी ही देर में आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत की आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे राग देशकर पर आधारित ख्याल गायन पंडित कृष्णराव शंकर पंडित सिंह।

जो जाने सो माने माने जो जाने

Yeah.

Anne. Yeah.

se go de ka se kam go na ti da ta yo ja ne so ma ne yo ja ne so

Ya,

Well,

现在还我的爱真了怎么就怎么也差不多

0: 好。大家你在你东，大家你在你西，大家你在你东，大家你在你西，大家你在你东，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你西，大家你在你我在那边的人呢，在那边的人呢，在那边的人，在那边的人头，在那边的人头，哦，在那边的人哈头。我在那边，我在那边，在那边，在那边，在那边，在那边，在那边。
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित कृष्णाराव शंकर पंडित से ख्याल गायन। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर

में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: An embassy in South Africa has said scientists in Russia have developed a new vaccine against the latest strain of Ebola virus. Russian Health Minister Mikhail Murashko announced the development. Scientists said the vaccine may also work against the rare Bundibugyo strain linked to recent outbreaks in the Democratic Republic of the Congo. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier one match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs, Gujarat Titans were all out for 162 with 3 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इसराइल की सेना ने कहा गाजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है और ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि CEPA व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: सरकार का प्रयास है कि चीजों को आसान बनाया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। हमने बहुत ही अच्छा और संतुलित समझौता किया है।
1: इजराइल की सेना ने कहा है कि गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदेह को मार गिराया गया है। एक रिपोर्ट।
3: इसराइल ने कहा है कि यह अभियान इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के आदेश पर चलाया गया था। रिपीट, इसराइल ने ये आदेश पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली नागरिकों और सैनिकों की हत्या, अपहरण और घायल होने में शामिल होने का आरोप लगाया। ओधे हाल ही में अजेद्दीन अल हदाद के स्थान पर सैन्य प्रमुख बना था। अजेद्दीन अल हदाद इससे पहले इसराइली हमले में मारा गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल सभी लोगों को बनाना जारी रखेगा। इस बीच इसराइल ने दक्षिण लेबनान में बड़े हवाई हमले कर टायर और मर्जियून जिले को निशाना बनाया है। इन हमलों में कल 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। एक रिपोर्ट।
0: श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक है। श्री ग्राहम ने पाकिस्तान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते में शामिल होने के आह्वान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने का भी आग्रह किया। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार करने के बाद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो देश की मूलभूत विचारधाराओं के खिलाफ हो। श्री ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ वार्ता से जुड़े व्यापक पश्चिम एशिया शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और तुर्की सहित कई मुस्लिम बहुल देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया था। वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता अमरीका समर्थित समझौता है। इसके अंतर्गत इसराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया था। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने कहा है कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने इस उपलब्धि की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वैक्सीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हाल ही में फैले दुर्लभ बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है। एक रिपोर्ट।
4: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महीने की 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। इधर देश में हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद एयरलाइन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि युगांडा और कांगो से आने जाने वाली उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस के लिए ये अनिवार्य है कि वो यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरवाएं। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है। फिलहाल बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई भी आधिकारिक रूप से स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सर फिरोजी।
1: पूर्वी लेबनन की बेका घाटी में स्थित मशगारा गांव पर हुए इजरायली हवाई हमले में 12 लोग मारे गए हैं। ये हमले लेबनन और इजरायल के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की अमेरिका में होने वाली बैठक से 3 दिन पहले हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू द्वारा हिजबुल्ला के खिलाफ और अधिक आक्रामक हमले करने के ऐलान के बाद ये कार्रवाई की गई है। इजरायल की सेना ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि वो पूर्वी लेबनन में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंडमास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक हासिल किया। ब्लिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया, जबकि श्रीलंका के रानिंदु लियानागे ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक हासिल किया। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-17, 21-18, 18 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में कल सिंधु का मुकाबला होगा जापान की रिको गुंजी से। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

0: स्पाइडर्स हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. External Affairs Minister S. Jayashankar co-chairs 17th Foreign Ministers Framework Dialogue with his, Aust-

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे सफर में स्वागत है आपका। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं ये गाना।

0: आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया जाग उठा इंसान फिल्म का ये गीत। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे राजेश रोशन।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सब्बीर कुमार का गाया फिल्म गुलामी का ये गीत। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: आरोग्यम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुनिए आज रात 8 बजे आपके साथ होंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म से। लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ें हैं, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म दलाल से कुमार सानू की आवाज है, बोल माया गोविंद के हैं और धुन बप्पी लहरी का।

0: फिल्म जुबैदा का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में। शब्दकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार थे एआर रहमान। इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है।
1: आरोग्यम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुनिए आज रात 8 बजे आपके साथ होंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक।
2: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ. मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाली इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के समृद्धि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 11:05:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ पूनम श्रीवास्तव। नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं? इन दिनों मौसम के हाल से हम और आप सब बेहाल परेशान से हैं, है ना? सूर्य की बढ़ती तपिश ने हमें घरों में कैद कर रखा है। लोगों से विशेष सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है, जो सही भी है। कुछ छोटी छोटी सावधानियां ही हैं जो हमें और हमारे अपनों के जीवन को बचा सकती हैं, है ना? तो हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप और लू के सीधे संपर्क से हमें बचना है। खाली पेट घर से बाहर न निकले, हल्का एवं पौष्टिक भोजन करके ही बाहर जाएं। धूप में निकलने के पहले सर को टोपी, कपड़े या छाते से अवश्य ढक कर रखें। आंखों को धूप से बचाने के लिए काले चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। श्रोताओं, इस बात का ध्यान रखिए कि अधिक मात्रा में नींबू पानी, छाछ एवं अन्य तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। इन दिनों बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी घरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था यदि हम करें तो बेहद अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखें। यदि चक्कर आ रहा हो, अत्यधिक पसीना, उल्टी, तेज बुखार, बेहोशी या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों से हमें संपर्क करना चाहिए। और हाँ, इन दिनों ढीले ढाले सूती वस्त्र का यदि हम प्रयोग करें तो बेहद आरामदायक होता है। तो दोस्तों, ये तो बातें हुई स्वास्थ्य की, यानी शारीरिक स्वास्थ्य की, पर मानसिक स्वास्थ्य का क्या? उसका भी ध्यान तो हमें ही रखना होता है। चलिए, मन को स्वस्थ और तरोताजा रखने के लिए एक प्यारा सा गीत हम और आप मिलकर सुनते हैं।

श्रोताओं, धड़कन फिल्म का ये गीत आपने सुना। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें थी। समीर ने इस गीत को लिखा था और नदीम श्रवण ने धुन तैयार किया था।

श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और पुण्यदायी मास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्र मास की गणना में अंतर उत्पन्न हुआ, तब संतुलन हेतु एक अतिरिक्त मास प्रकट हुआ। प्रारंभ में उपेक्षित होने के कारण इसे मलमास कहा गया, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने इसे अपना स्वरूप और नाम प्रदान कर पुरुषोत्तम मास के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया। तभी से ये मास भगवान विष्णु को समर्पित होकर भक्ति, सेवा और साधना का श्रेष्ठ काल माना जाता है। जेठ का महीना यानी छुट्टियां। किसी से भी हम अगर पूछ लें तो वो जेठ के महीने में परिवार संग बिताए प्रेम स्नेह भरे दिनों की स्मृतियां हमें बताता मिलेगा। आज जीवन में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन गनीमत है कि एक चीज नहीं बदली और वो है गर्मी की छुट्टियां। और ये छुट्टियां अक्सर ननिहाल ददिहाल में ही बीतती थी पहले। आज भी यही एक महीना है जब परिवार एक साथ जुटता है। तो आइए जेठ और पुरुषोत्तम मास के इस सुंदर संयोग के महीने में सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेते हुए सभी देवताओं का नमन करते हुए सार्थक बनाएं, अंतःकरण को प्रभु के चरणों में रख दें।

सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज लता मंगेशकर की थी। इस गीत को लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों की बातें हो रही थी तो इन दिनों बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल ही रही हैं। बच्चे रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ से थोड़ा निश्चिंत से हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चे घर में ही रह रहे हैं। घरों में बंद बच्चे मनोरंजन के लिए लगातार स्मार्टफोन और स्क्रीन का सहारा ले रहे हैं, जो कि सही नहीं है, है ना। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाला रेडिएशन जो है वो बच्चों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इस रेडिएशन के कारण तंत्रिका संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। इसकी वजह से बच्चों में भूलने, सांस लेने और सीखने की क्षमता में कमी आ जाती है। बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे में बेहद आवश्यक है कि हम बच्चों के मोबाइल का जो उपयोग की जो एक समय सीमा होती है उसे हम निर्धारित करें, तय करें कि बच्चे बस इतने देर ही मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हम कर पाएँ तो उनकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।

तो दोस्तों, बच्चों की बातें हो रही थी। बच्चे स्मार्टफोन से दूर रहें, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें दूसरी चीज़ों में व्यस्त रखा जाए, जैसे पुस्तक पढ़ने की उनमें आदत डालें। सजग अभिभावक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को सही दिशा दिखाएं। केवल मोबाइल मत देखो कहने से बच्चे बात नहीं मानेंगे, हमें उन्हें एक बेहतर और आकर्षक विकल्प देना होगा। इस गर्मी की छुट्टी में रोज़ एक घंटा फैमिली गेम टाइम के रूप में यदि हम बिताएं तो बेहद अच्छा होगा। ये छोटा सा कदम हमारे बच्चे के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बोर्ड गेम के जरिए हम बच्चों के साथ जो यादें बनाएंगे वे जीवन भर उनके साथ ही रहेंगे। तो देर किस बात की है, आज ही अलमीरे से पुराना बोर्ड गेम निकालिए और परिवार के साथ एक नई शुरुआत कीजिए।

श्रोताओं, आज के दौर में बाहर जाकर घूमना या किसी मॉल में गेमिंग जोन में जाना बेहद खर्चीला हो चुका है। इसके उलट बोर्ड गेम किफायती और टिकाऊ विकल्प है। एक बार खरीदा गया बोर्ड गेम सालों साल पूरे परिवार का मनोरंजन कर सकता है। इसके लिए किसी महंगे गैजेट, इंटरनेट कनेक्शन या बिजली की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी भी आय वर्ग के भारतीय परिवार के लिए बजट के अनुकूल मनोरंजन का साधन है। इसे घर के किसी भी कोने में आसानी से खेला जा सकता है। श्रोताओं, आजकल के बच्चे अपना अधिकांश समय मोबाइल पर बिताते हैं। जैसा कि हमने बताया, लगातार स्क्रीन देखने से उनकी आँखों और व्यवहार पर भी बुरा असर पड़ता है। भारतीय परिवारों में संवाद की कमी आजकल अक्सर देखी जा रही है। हर कोई अपने डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहता है। बोर्ड गेम इस दूरी को पाटने का काम बखूबी करते हैं। जब तीन पीढ़ियाँ एक साथ बैठकर चौपड़ या व्यापार जैसे खेल खेलती हैं, तो घर का माहौल जीवंत होता है। खेल के दौरान होने वाली हंसी ठिठोली रिश्तों की कड़वाहट और दूरी को मिटा देती है। ये समय आपसी बातचीत का माध्यम बनता है।

तारीफ जमीन पर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शान और आमिर खान की आवाज़ें थीं। प्रसन्न जोशी ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, बोर्ड गेम बच्चों के जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। खेल में कभी जीत मिलती है तो कभी हार का सामना करना पड़ता है। परिवार के सदस्यों के समक्ष ये अनुभव उनमें धैर्य और खेल भावना का विकास करता है। आजकल जहां बच्चों को अक्सर हर क्षेत्र में अव्वल आने का दबाव झेलना पड़ता है, वहां ये खेल उन्हें सिखाते हैं कि हारना जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया अनुभव है। चलिए इस बातचीत के बाद कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। श्रोताओं, इतिहास के पन्ने में आज का दिन कई महत्वपूर्ण कारणों से याद किया जाता है। आज ही के दिन यानी 27 मई को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माता थे, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। वे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल की सजा भी काटी। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर वे देश के

पहली प्रधानमंत्री बनी और सन 1964 में अपने निधन तक इस पद पर बने रहे। आज उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर हम शत शत नमन करते हैं। और अब नमन करते हैं अशोक चक्र विजेता हंगपन दादा को। दोस्तों, हंगपन दादा भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के एक जाबाज सैनिक थे। वे सन 1997 में भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट में शामिल हुए और बाद में असम रेजिमेंट में चले गए। उनके साथी उन्हें प्यार से दादा बुलाते थे। वे अपने अदम्य साहस और शारीरिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। मई सन 2016 में 35वें राष्ट्रीय राइफल्स के साथ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात हंगपन दादा दुर्गम और बर्फीली पहाड़ियों पर बिना अपने जीवन की परवाह किए रेंगते हुए आतंकवादियों पर धावा बोल दिया। आमने सामने की भीषण मुठभेड़ में उन्होंने पहले दो आतंकवादियों को बहुत करीब से मार गिराया और फिर घायल होने के बावजूद तीसरे आतंकवादी को भी मौत के घाट उतार दिया। चौथे आतंकवादी से लड़ते समय उन्हें गंभीर गोलियां लगी। चौथे आतंकवादी को भी उनके साथियों द्वारा मार गिराया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण हंगपन दादा 27 मई सन 2016 को वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान देने के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम मनमोहन वारिस की आवाज़ें थी, गीत के बोल समीर अंजान के थे और संगीत था ए आर रहमान का।

दोस्तों, आज यानी 27 मई को हर वर्ष विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि अचानक हुई स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों, दुर्घटनाओं या गंभीर बीमारियों के समय सही समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाने के महत्व को उजागर करना। ये दिवस उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और चिकित्सा कर्मियों को समर्पित है जो जान बचाने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। आपातकालीन चिकित्सा दिवस 2026 की थीम है आपातकालीन चिकित्सा टीमों के लिए सुरक्षित स्थान। आपातकालीन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले बढ़ते जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और सुरक्षा, सम्मान और हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता का आह्वान करना है। दोस्तों, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के समय आप सीधे आपातकालीन सेवाओं से जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर है 112, एम्बुलेंस सेवा का नंबर है 108 और मेडिकल हेल्पलाइन के लिए 102 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं कार्यक्रम में।

साथियों, फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, साधना सरगम और मधुश्री की आवाजें थी। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने। दोस्तों, आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर, सफल मुख्य कोच और दिग्गज कमेंटेटर रवि शास्त्री जी का जन्मदिन है, तो उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, रवि शास्त्री ने भारत के लिए 1981 से 1992 के बीच 80 टेस्ट और 150 वनडे मैच खेले। सन 1985 की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। सन 2017 से 2021 तक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहे। संन्यास के बाद रवि शास्त्री ने कमेंट्री

की दुनिया में बड़ा और प्रतिष्ठित मुकाम हासिल किया। उनकी दमदार आवाज और स्पष्ट रणनीतिक विश्लेषण क्रिकेट प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय है। एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।

लुटेरा फिल्म का ये गीत आपने सुना मोनाली ठाकुर की आवाज़ में, और इस गाने के साथ ही अब कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: episode.
1: नमस्कार जमशेदपुर, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। दिन के 12:05 और 34 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम भावगीत सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। कार्यक्रम भावगीत के साथ आज मैं हूं आपकी दोस्त पूनम श्रीवास्तव। नमस्कार। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी जिंदगी है, जहाँ अपनों की बातें आती हैं तो फिर क्या जीतना और क्या हारना। अपनी खुशी तो वहीं होती है जहाँ अपनों का साथ होता है, अपनों का प्यार होता है। और ये सच है दोस्तों कि जहाँ रिश्तों में प्यार की मिठास हो, वहाँ तो हार कर भी जीतने का एहसास होता है।

दोस्तों, ज़िंदगी का हर पड़ाव रिश्तों के ताने बाने से बना होता है। हर रिश्ते की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। इन सबों के बीच एक चीज़ ऐसी होती है जिसके बिना हर रिश्ता अधूरा सा लगता है, वो है प्यार। तभी तो कहते हैं, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते हैं।

दोस्तों, हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है। हर रिश्ते में एक दूसरे को सम्मान देने की ज़रूरत होती है। जब हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उसे तवज्जो देते हैं, तभी रिश्ते में भीनी भीनी खुशबू बरकरार रहती है।

कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, पहले दिल से फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। वैसे दोस्तों, हर रिश्ते को पूरी शिद्दत से जिए, यही जिंदगी की असली पूंजी है। वक्त कम हो या ज्यादा, अपनों के साथ अवश्य रहें, कुछ अपनी कहें और कुछ उनकी सुनें।

श्रोताओं, कार्यक्रम भावगीत में आज आपने जिन फिल्मों की गानी सुनी वो थी अपने, दिल का रिश्ता, सबेरे वाली गाड़ी और हम आपके दिल में रहते हैं। आवाजें थी सोनू निगम, जयेश गांधी, जसविंदर नरूला, अलका याग्निक, कुमार सानू, लता मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल की। गीत रचना थी समीर और मजरूह सुल्तानपुरी की। संगीत था हिमेश रेशमिया, नदीम श्रवण, आरटी बर्मन और अनु मलिक का। और अब कार्यक्रम भावगीत से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम भावगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खान का सितार पर बजाया राग हेमावती।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अब्दुल हालिम जफर खान का सितार पर बजाया राग हेमावती। अब आइए सुनते हैं उस्ताद मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन राग सुघराई में।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन राग सुघराई में। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजा चाहता है अब समाचार सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के 2 दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes. Stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life, Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside their homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaborations. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both the ministers. United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the US and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. In a social media post, Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani air bases and said comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to U.S. President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's defense minister, Khwaja Mohammad Asif, rejected the idea of Pakistan joining the Abraham Accords in an interview with a TV channel. At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli air raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के SIR अभियान को ठहराया पूरी तरह वैध। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से की मैपिंग अभियान से जुड़ने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए देशवासियों से की बड़ी अपील। दोपहर में बाहर ना निकलने और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखने की दी सलाह। राज्य कैबिनेट की आज शाम 4 बजे से रांची में होगी अहम बैठक। विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति।

0: हजारीबाग में बड़ा हादसा। सेफ्टी टैंक से अवैध महुआ निकालने के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। और रांची की नीतू कुमारी महतो बनी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर, जापान में अंडर 18 एशिया कप में करेंगे एम्पायरिंग। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह पुनरीक्षण कार्य कराने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से वोटर लिस्ट मैपिंग अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कतों से घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के नाम ऑनलाइन नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए विशेष कैंप के बाद BLO खुद घर घर जाकर मैपिंग का काम पूरा करेंगे।
1: किसका मैपिंग नहीं हुई फिर भी एलिमिनेशन फॉर्म करके दे दिया, उसमें आपके ERO आवश्यक अनुसार आपका नोटिस इश्यू करके बुला के आपका कागज लेके उसका आगे का आपका 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में होगा, अपने खुद का एक पेरेंट का देना होगा। किसका जन्म 2/12/2004 का बात है वो दोनों पेरेंट्स का अपने सेल्फ।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची जिला समिति ने वोटर लिस्ट सुधार और बूथ मजबूत करने पर बैठक की। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहकर हर योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की अपील की। जिला संयोजक मुश्ताक आलम ने भी सभी प्रखंडों में बूथ समितियां जिला संयोजक मुश्ताक आलम ने कहा कि सभी प्रखंडों में बूथ समितियां मजबूत की जाएंगी। देश भर में बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने की बड़ी अपील की है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के तेज धूप में बाहर ना निकलने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और घरों की छतों, दुकानों तथा बालकनियों में पशु पक्षियों के लिए पानी से भरे बर्तन रखने का भी आग्रह किया है। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरना, सनातन और हिंदू संस्कृति एक ही है। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों के बीच नफरत और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
2: 2016 में BJP के सरकार ने वो अदर कॉलम को भी हटाने का काम किया। आज नतीजा ये है कि लोगों के पास कहीं पे भी जो प्राकृतिक धर्म में है या जिनको धर्म का विशेष कोड आज तक आवंटन नहीं किया गया है उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और उनको जबरन इन्हीं ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा।
0: इधर भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ायक ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के उस बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों को गुमराह करने और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
3: इसमें भी शिल्पी नेहा तिर्की जी को राजनीति सोचता है क्योंकि ये किसी का एजेंडा को चलाने का काम करती है, इसलिए ये बात करती है। ये बोलते आदिवासी सनातन नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी सनातन नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि देश भर के आदिवासी का अगर कोई देव है, कोई आराध्य देव है, आदि काल से जो रहते आ रहे आदिवासी का कोई देव है तो वो आदि देव महादेव है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सरकार के कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में युवाओं और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरंतर प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प से बड़े लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इसी भावना के साथ देशवासी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। राज्य में जल्द ही आधुनिक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पहल से प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ती तथा सुरक्षित यात्रा मिलेगी। योजना के तहत बुजुर्गों, छात्रों और जरूरतमंदों को मुफ्त या रियायती सफर की सुविधा दी जाएगी, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गुमला जिले की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना ने उनकी जीवन शैली बदल दी है। अब लकड़ी के चूल्हे के धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिल गई है, जिससे समय की बचत और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।
4: उज्ज्वला योजना बहुत ही हम लोग को लाभदायक हो रहा है। हम लोग लकड़ी झूरी से बाज हो गए हैं और अच्छा से बच्चा लोग को स्कूल भेज रहे हैं, अच्छा से खाना पीना टाइम से दे सक रहे हैं, हम लोग भी खा के अपना काम जा सक रहे हैं। नहीं तो बरसात में हम लोग दिक्कत हो जाता था, लंच नहीं बनता था, बच्चा भी स्कूल नहीं जा पा रहा था। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके टीम को भी धन्यवाद देती हूँ।
0: हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के कूद गांव में एक सेफ्टी टैंक के भीतर दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से बेहोश है। पुलिस के अनुसार पुलिस के डर से टैंक में अवैध महुआ शराब छिपा कर रखी थी। देर रात उसे निकालने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी पीड़ितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया।
5: अचानक 10 बजे रात में हमको फोन आया कि पेप्सी टैंकी में कुछ लोग गिर गए हैं, तो देखे कि 3-4 लोग गिरे हुए थे, तो उसमें फिर बहुत लोग बचाने का प्रयास किया और चारों को वहां से निकाला गया। फिर उसको हम लोग सदर अस्पताल लेकर तुरंत गए, 3 लोगों को डॉक्टर साहब मृत घोषित बता दिए और एक अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनका जो भर्ती है।
0: धनबाद के बैंकमोड़ थाना क्षेत्र में स्थित मिठाई की एक दुकान में आज सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान संचालक के अनुसार इस घटना में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई है। शुरुआती कारोबार में बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंक की वृद्धि के साथ 23,941 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,73,000 रुपए प्रति किलो है। रांची की नीतू कुमारी महतो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर बन गई हैं। वह झारखंड की दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर हैं। नीतू 29 मई से 6 जून तक जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप में एम्पायरिंग करेंगी। हॉकी झारखंड ने उनकी इस बड़ी सफलता को राज्य के लिए गौरवपूर्ण बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के SIR अभियान को ठहराया पूरी तरह वैध। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से की मैपिंग अभियान से जुड़ने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए देशवासियों से की बड़ी अपील। दोपहर में बाहर ना निकलने और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखने की दी सलाह। राज्य कैबिनेट की आज शाम 4 बजे से रांची में होगी अहम बैठक। विभिन्न विभागों के कई नए प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। हजारीबाग में बड़ा हादसा। सेफ्टी टैंक से अवैध महुआ निकालने के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। और रांची की नीतू कुमारी महतो बनी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर, जापान में अंडर 18 एशिया कप में करेंगी एम्पायरिंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आप

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
5: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम डार्क द फायर।

दाग द फायर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: प्रायोजित कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुनिए आज रात 8 बजे आपके साथ होंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुनीति चौहान की आवाज में चमेली फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत पर किया है संदेश शांडिल्य ने।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में चमेली फिल्म का ये गीत आपने सुना। अब आइए श्रोताओं अगला गीत सुनते हैं वायर चीट इंडिया फिल्म से, आवाज़ अरमान मलिक की है।

वह चीट इंडिया फिल्म का ये गीत आपने सुना अरमान मलिक की आवाज थी। इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली ने। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में दिलवाले फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में सौतन की बेटी, इस फिल्म का गीत जिसे लिखा है सावन कुमार ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सौतन की बेटी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे सावन कुमार और संगीतकार थे वेदपाल। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो

0: निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

0: से कनाडा इंडिया पार्टनरशिप।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
2: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम से भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
2: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर समाचार अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था रवि ने, आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था आंखें। आइए श्रोताओं अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। लोफर फिल्म का ये गीत है जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये सदाबहार गीत आपने सुना फिल्म लोफर से। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म बॉबी से।

लता मंगेशकर की आवाज़ में बॉबी फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं पाकीज़ा फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत गुलाम मोहम्मद का।

महल पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म पाकीज़ा का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत था गुलाम मोहम्मद का। श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, आपको बता दें, दिन में 3 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT द्वारा उमंग। 3:30 पर सुनेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के फनकार होंगे पंकज उदास। 2 केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। दिन के 2:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार सुनेगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: जय भारती। अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 2:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह पुनरीक्षण कार्य कराने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से वोटर लिस्ट मैपिंग अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कतों से घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के नाम ऑनलाइन नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए विशेष कैंप के बाद BLO खुद घर घर जाकर मैपिंग का काम पूरा करेंगे।
2: किसका मैपिंग नहीं हुई फिर भी एनुमरेशन फॉर्म करके दे दिया, उसमें अब आपके ERO आवश्यक अनुसार आपका नोटिस इश्यू करके बुला के आपका कागज लेके उसका आगे का आपका 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में होगा। अपने खुद का एक पेरेंट का देना होगा। किसका जन्म 2/12/2004 का बात है, वो दोनों पेरेंट्स का अपने सेल्फ।
1: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुप्रीम कोर्ट के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आज दिए फैसले का स्वागत किया है। गिरिडीह जिले के मधुबन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रहित में फैसला लेती है, लेकिन विपक्ष का काम विरोध करना होता है। मतदाता सूची का स्पेशल पुनरीक्षण राष्ट्रीय हित में था, लेकिन विपक्ष ने जनता को गुमराह किया।
3: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता को समय समय पर प्रशिक्षण यानी पार्टी के बारे में जाने, पार्टी के इतिहास से लेकर सांसारिक विषयों को लेकर भी चर्चा होनी है और विभिन्न वक्ता अपने अपने विषयों पर चर्चा भी करते हैं। और हमें लगता है ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में ही है कि अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षित कर पार्टी के रीति नीति के बारे में भी कैसे अनुशासित होकर।
1: आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग करना अनिवार्य है। इस अवसर पर श्री जाधव ने ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने और वर्ष 2026 के लिए जन भागीदारी बढ़ाने हेतु योग संगम पोर्टल का पुनः शुभारंभ किया और राज्यों तथा संस्थानों में योग के लिए समर्पित स्थान विकसित करने के लिए योग पार्क पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। समारोह का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले 2 दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब अभियान के दौरान 135 से ज्यादा लंबित वारंटों का भी निष्पादन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को पकड़ा गया। रांची पुलिस के अनुसार अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध पर कार्रवाई के लिए इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। चतरा जिले में उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध उत्पाद विभाग द्वारा हंटरगंज थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर गेंजना गांव में अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। अवैध रूप से बनाई गई शराब को कई ब्रांड की बोतलों में भरकर नकली लेबल और होलोग्राम लगाकर बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। अभियान के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक प्रेम प्रकाश उरांव ने बताया कि सभी संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध झारखंड उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में उपायुक्त मनीष कुमार के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 टीबी मरीजों के बीच पोषण युक्त फूड बास्केट का वितरण किया गया। उपायुक्त मनीष कुमार ने निक्षय मित्र बनकर 51 टीबी मरीजों को गोद लिया। इस दौरान उपायुक्त ने जिले के सभी टीबी मरीजों से नियमित रूप से दवा का सेवन करने और समय पर अपना स्वास्थ्य जांच कराने तथा पोषक आहार ग्रहण करने की सलाह दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3:30 हुए हैं, 3:30 हो रहे हैं, श्रोताओं माफ करें। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है।
2: जी,
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
1: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओ, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा

0: पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा दो की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
0: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
1: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस

0: प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
2: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
3: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
2: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
3: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
2: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
4: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
5: क्या बात है,
4: सुनकर ही जोश आ गया।
5: हाँ
4: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
5: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
1: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया।

0: आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई

0: शेरशाह तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
1: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
0: अरे देख लेंगे।
2: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
3: हमला करो, दुर्गा माता की जय,
2: माता की जय। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
5: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। How nice. विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
5: धन्यवाद।
2: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी, साहब आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नारायण, तू बीवी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,

0: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
1: साबरी साबरी,
2: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
3: क्या हुआ तुम्हें? नहीं,
2: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
4: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। दिन के 3:30 और 50 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं पंकज उदास की आवाज।

0: पंकज उदास की आवाज में गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: खुशखबरी, आरोग्यम केयर हॉस्पिटल लाया है बेहतर स्वास्थ्य का तोहफा,
2: जहां हर महीने की 1 और 16 तारीख को है फ्री OPD सेवाएं।
1: पाए अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी बीमारियों में मुफ्त परामर्श।
2: आए आरोग्यम केयर हॉस्पिटल एट दयाल सेंटर, शेरे पंजाब चौक, आदित्यपुर। आपकी मुस्कान हमारी पहचान।
0: अब प्रस्तुत है आदिवासी लोकगीत का कार्यक्रम।
3: प्रस्तुत है आदिवासी लोकगीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा जोहार। श्रोताओं, लीजिए आज सुनिए मुंडारी लोकगीत। कलाकार है थॉमस बाजराय।
4: अभी जो आप ये गीत सुनेंगे, इस गीत आते ही तुरंत बरसात का मौसम आने वाला है और खेतों की जुताई कुड़ाई

0: अभी आप सुन रहे हैं मुंडारी लोकगीत, कलाकार हैं थॉमस बाजराय।
1: प्रस्तुत गीत में नीले आकाश में छाए काले

अभी आप सुन रहे थे मुंडारी लोकगीत, कलाकार थे थॉमस बाजराय। श्रोताओं, इसके साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

आदिवासी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब समाचार मुख्यांश सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुप्रीम कोर्ट के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आज दिए फैसले का स्वागत किया है। गिरिडीह जिले के मधुवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रहित में फैसला लेती है, लेकिन विपक्ष का काम विरोध करना होता है। मतदाता सूची का स्पेशल पुनरीक्षण राष्ट्रीय हित में था, लेकिन विपक्ष ने जनता को गुमराह किया। केंद्रीय मंत्री ने ये बात आज मधुवन में गिरिडीह और कोडरमा जिले के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास करना अनिवार्य है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। समारोह का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार से झारखंड के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियों के लिए तत्काल डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की उदासीनता और तुष्टीकरण की नीतियों के कारण झारखंड घुसपैठियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

समाचार मुख्य अंश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: शाम के 4:02 और 37 सेकंड हुए हैं। अब आइए सुनते हैं नाटक एहसास।
1: कौन
2: जी? मैं पोस्टमैन।
1: ओह अच्छा, खोल रही हूँ, एक मिनट।
2: नमस्ते बहन।
1: नमस्ते।
2: आपकी चिट्ठी आई है, बहुत दिनों बाद आई।
1: हाँ, मैं अपने भाई की इस चिट्ठी का इंतजार कर रही थी।
2: रंजना बेटी की तबीयत कैसी है?
1: वैसे ही है भाई जी, कोई सुधार नहीं है, बल्कि तीनों दिन और
2: खुदा पर भरोसा रखें बहन, वो जरूर ठीक हो जाएगी। अच्छा नमस्ते।
1: नमस्ते। रंजना बेटी, रंजना
3: क्या है, क्यों तंग करती है बार बार?
1: तुम्हारी दवा का समय हो गया है बेटी।
3: मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मैं दवा नहीं पीऊंगी। बस
1: ऐसा नहीं कहते बेटा, दवा तो पीनी ही पड़ेगी ना।
3: मुझे नहीं पीनी है दवा, कह चुकी हूँ ना नहीं पीनी है। बस
1: देखो बेटी, आज डॉक्टर साहब आएंगे ना तुम्हें देखने, अगर तुम दवा नहीं पियोगी
3: तो क्या कर लेंगे वो, उनको आने से मना कर दो।
1: बेटा आखिर वे आते हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही ना, तुम जल्दी जल्दी अच्छी हो जाओगी।
3: झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं जानती हूँ मैं कभी अच्छी नहीं होंगी।
1: अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, पोस्टमैन अंकल आए थे तुम्हारे मामा की चिट्ठी लेकर। पढ़ोगी?
3: मुझे नहीं पढ़नी है कोई चिट्ठी।
1: अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा, लो अब अच्छे बच्चे की तरह दवा पी लो।
3: मैं बच्ची नहीं हूँ, जवान हूँ और सब कुछ समझती हूँ, मुझे बहकाओ मत।
1: मेरी बात मान बेटी, ईश्वर के लिए।
3: नहीं नहीं नहीं।
1: क्यों इस तरह जिद करती है तू रंजना? आखिर
3: लाओ लाओ मुझे दो।
1: शाबाश शाबाश बेटा, लो। अरे ये क्या किया, सारी दवा फेंक दी, गिलास भी तोड़ डाला।
3: हाँ अब से ऐसे ही करूंगी, जबरदस्ती पिलाओगी तो थूक दूंगी दवा।
1: हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं तुम्हें?
3: मुझे नहीं बचना है, मैं जानती हूँ मुझे मरना ही है।
1: हे ईश्वर,
3: नाम मत लो मेरे सामने ईश्वर का, मुझे किसी ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं है, समझी?
1: लगता है डॉक्टर साहब आ गए।
3: मैंने कहा ना मुझे किसी डॉक्टर से नहीं मिलना है, मैं जानती हूँ कोई डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता है।
1: हाँ हाँ आ रही हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब।
2: नमस्ते नमस्ते,
1: आइए।
2: कैसी है रंजना?
1: अब क्या बताऊँ डॉक्टर साहब।
2: क्यों, क्या बात है, तबीयत कुछ अधिक बिगड़ गई क्या?
1: पहले तो दवा पीने से मना करती थी, पर आज आज उसने दवा ही फेंक दी।
2: अच्छा चलिए देखता हूँ उसे।
1: कहती है मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी।
2: क्यों?
1: इसलिए कि वो जानती है कि वो बच नहीं सकती, उसे मरना ही है।
2: यह सब उसे किसने बताया?
1: किसी ने नहीं, वो कोई बच्ची नहीं है डॉक्टर साहब, 20 वर्ष की है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती और समझती है।
2: मैं समझाता हूँ उसे।
1: लेकिन डॉक्टर साहब,
2: यू डोंट वरी, आप यहीं रहें, उसके कमरे में मैं अकेला ही जाऊंगा।
1: जी अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ।
2: हेलो रंजना, हाउ आर यू? क्या बात है बेटे, आज बात नहीं करोगी मुझसे?
3: नहीं।
2: क्यों भला?
3: क्योंकि आप मुझे धोखा देते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं कि तुम अच्छी हो जाओगी।
2: ऑफ कोर्स तुम अच्छी हो जाओगी बेटा, किसने तुमसे कहा था?
3: प्लीज डॉक्टर, मुझे और धोखा मत दीजिए।
2: देखो रंजना, धोखा तुम्हें और कोई नहीं दे रहा है, तुम खुद को ही धोखा दे रही हो।
3: नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं कभी अच्छी नहीं हो सकती, एक ना एक दिन मुझे मरना ही है।
2: रंजना मेरी बात तो सुनो पहले।
3: मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जाइए यहाँ से।
1: रंजना क्या कह रही हो तुम, कुछ होश भी है कि किससे क्या कह रही हो?
2: अरे आप क्यों आ गई, मैं इसे समझा रहा था।
3: मुझे कुछ नहीं समझना है अब, बस जाओ तुम लोग, लीव मी अलोन।
1: रंजना
2: प्लीज प्लीज, आप उत्तेजित ना हो, उसे कुछ मत कहिए।
1: लेकिन डॉक्टर साहब उसे इतना सेंस तो होना चाहिए।
3: हाँ, मुझे सेंस नहीं है तो क्यों आते हो मेरे पास? मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती।
2: ओके ओके रंजना, एज यू प्लीज, हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
3: मैं नफरत करती हूँ सबसे, अपने आप से, अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है मुझे।
2: रंजना प्लीज रिलैक्स, आइए चलिए उस कमरे में चलें।
1: डॉक्टर साहब आप रंजना की बातों का बुरा ना माने, मैं आपसे क्षमा।
2: कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं क्या रंजना बेटी की स्थिति नहीं समझ रहा हूँ?
1: मेरी तो समझ में नहीं आता है डॉक्टर साहब कि वो दिन पर दिन इतना आक्रामक क्यों होती जा रही है, उसके मन में इतनी नफरत क्यों भर गई है।
2: ये कुछ भी असामान्य नहीं है बल्कि स्वाभाविक है। आखिर उसकी उम्र ही क्या है, महज 20 साल। जिंदगी को भरपूर जीने की उम्र है यह। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजिडी यह है कि उसे एक भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया है। एक ओर जीने की ललक और दूसरी ओर मौत का इंतजार, इन दोनों के बीच वह अपना संतुलन खो रही है।
1: मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, बिल्कुल अकेली और असहाय हो उठी। हर पल उसे मौत की ओर बढ़ते देखकर मेरी ममता तड़प उठती है।
2: प्लीज,
1: मन हाहाकार कर उठता है।
2: प्लीज अपने को संभालें, आप खुद कमजोर हो जाएंगी तो वह और भी जल्दी।
1: नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। उसकी मृत्यु की कल्पना से ही मैं कांप उठती हूँ। मैंने अपने पति को पहले ही खो दिया है, अब इस बच्ची को भी। उसके बिना मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगी डॉक्टर साहब।
2: प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने इस इमोशन को आप कभी रंजना के सामने न आने दें। मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपके आने से सहारे का अनुभव होता है।
2: याद रखिएगा कि हम शायद रंजना को जिंदगी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी के प्रति उसमें निराशा, आक्रोश और नफरत को कम करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसकी जिंदगी और मौत के बीच कुछ फासला बढ़ सके।
1: जी।
2: अच्छा, नमस्ते।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब।

0: नमस्ते, मनी ऑर्डर है आपका।
1: नमस्ते। ओ, भैया ने रुपए भेजे होंगे।
0: ये रहे रुपए, यहाँ दस्तखत कर दीजिए।
1: जी
0: जी, बस हो गया। अरे हाँ, रंजना बेटी कैसी है?
1: वैसी ही है, बस मौत के इंतजार में।
0: क्या ये आप क्या कह रही हैं बहन?
1: बात कुछ ऐसी ही है भाई जी।
0: लेकिन उसे हुआ क्या है?
1: कैंसर।
0: कैंसर? या अल्लाह, उस भूसी लड़की को कैंसर?
1: हाँ भाई जी, वो भी शायद इतना बढ़ चुका है कि अब तो बस।
0: कभी कभी खुदा भी बड़ा बेरहम हो जाता है बहन। अभी तो उसके खेलने खाने के दिन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। जाने कब किसको क्या हो जाए। एक अर्ज करूं बहन?
1: कहिए ना भाई जी।
0: एक बार रंजना बिटिया से मिलना चाहता हूं।
1: लेकिन भाई जी, बात यह है कि।
0: क्यों, डॉक्टर ने मना कर रखा है क्या? तब रहने दो बहन।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है। असल में वो किसी से मिलना नहीं चाहती है, किसी की सूरत तक देखना नहीं चाहती है वो।
0: ओह, तो इसका मतलब है कि
1: उसे उसे सबसे नफरत हो गई है, अपने आप से भी।
0: तो फिर एक बार वही कहानी, वही हालात, जिंदगी और मौत का वही सिलसिला।
1: क्या बात है भाई जी?
0: नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आ गया था। डॉक्टर क्या कहते हैं बहन?
1: कहते हैं रंजना में जीवन के प्रति आशा और प्यार जगाऊं, लेकिन लेकिन कैसे करूं ये सब, मेरी समझ में तो कुछ भी।
0: आप कहें तो मैं कुछ कोशिश करूं।
1: लेकिन
0: आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे बस उससे मिला दीजिए। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।
1: आइए, रंजना दूसरे कमरे में है। रंजना, रंजना बेटी।
2: क्या है?
1: देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं।
2: मुझे किसी से नहीं मिलना है।
0: मैं तुम्हारा पोस्टमैन।

0: अंकल हूँ बिटिया, पहले मैं तुम्हारी सहेलियों की चिट्ठियाँ रोज तुम्हें लाकर दिया करता था ना,
1: तो
0: तुम, मैं यही पूछने आया हूँ कि आजकल तुम्हारी चिट्ठियाँ क्यों नहीं आती हैं?
1: हाँ, नहीं आती है, नहीं चाहिए मुझे किसी की चिट्ठी।
2: रंजना, फिर तुम?
0: और अगर तुम्हें कोई खत लिखना चाहे तो?
1: मुझे क्यों लिखेगा कोई, सब खुद गर्ज है, सबको मालूम है कि ये मरने ही वाली है, सबके सब सिर्फ मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं।
2: तुम बार बार ऐसा क्यों कहती हो बेटा?
1: और नहीं तो क्या कहूँ?
0: आप जाओ बहन, अपना काम निपटाओ, मैं रंजना बिटिया को बताऊंगा किसे कौन खत लिखेगा।
2: लेकिन वो तो ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ।
0: हाँ तो बेटा, मैं कह रहा था ना कि तुम्हें कोई खत लिखने वाला
1: सब है। सब झूठ है, धोखा है।
0: नहीं बिटिया, सच, तुम्हें खत लिखेगा एक निहायत खूबसूरत, शरीफ और जहीन नौजवान।
1: कौन है वो?
0: उसका नाम है शमीम, दिल्ली में नौकरी करता है, बड़ा खुश मिजाज है।
1: क्यों लिखेगा मुझे?
0: इसलिए लिखेगा कि जब वो तुम्हारी उम्र का था, उसे एक भयानक जानलेवा बीमारी हो गई थी।
1: कौन सी बीमारी?
0: कैंसर।
1: क्या?
0: हाँ बेटे, मेरा यकीन करो, उसे यही बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो भी तुम्हारी तरह केवल मौत का इंतजार कर रहा था। उसे भी अपनी जिंदगी से बेहद नफरत हो गई थी।
1: तब तो वो जरूर मर चुका होगा।
0: यही तो खुदा की करामात बेटे कि शमीम मरा नहीं, बल्कि जिंदा है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, और आज 25 साल का गबरू जवान है।
1: मैं नहीं मानती, मैं जानती हूँ कि इस बीमारी में कोई बचता नहीं है।
0: उसका भी यही ख्याल था बेटिया, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो शमीम, मरना तो एक दिन सबको है, तो फिर जिंदगी से इतनी नफरत क्यों करते हो? उसे मोहब्बत करो, मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि कभी कभी वो मौत को जिंदगी के पास भी फटकने नहीं देती।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर हुआ यह कि वो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करने लगा, उसने मौत की बात अपने जहन से उतार ली, और आज वो अपनी उसी जिंदगी को भरपूर जी रहा है।
1: मुझे विश्वास नहीं होता।
0: विश्वास तुम्हें जरूर होगा बेटे, जब वो खुद तुम्हें खत लिखेगा और एक दिन तुमसे मिलने भी आएगा।
1: आप उसे कैसे जानते हैं?
0: इसलिए जानता हूँ कि शमीम मेरा ही बेटा है।
1: आपका बेटा?
0: हाँ, मेरा बेटा। मैं उसे लिखूंगा कि तुम्हें खुद खत लिखे, तभी तुम जान पाओगी कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है।
2: लीजिए भाई जी, चाय।
0: शुक्रिया बहन।
2: बेटी रंजना, तुम भी दवा पी लो।
1: अभी नहीं
0: बिटिया, दवा पी ले, नहीं तो शमीम नाराज हो जाएगा।
1: मुझे किसी की नाराजगी की, बाद में पी लूंगी।
0: बिटिया दवा नहीं पिएगी तो मैं भी चाय नहीं पीऊंगा।
1: लाओ दवा दो।
2: शाबाश बेटे, तू सचमुच मेरी रानी बिटिया है।
0: अच्छा बहन, चलता हूँ। बिटिया खुश रहना, हाँ मेरी बात याद रखना।
2: चलिए मैं आती हूँ, दरवाजा बंद कर दूँ। बहुत धन्यवाद भाई जी, कई दिनों बाद आज उसने दवा पी है।
0: खुदा का शुक्र है बहन, उसके घर देर है, अंधेर नहीं, उसी पर भरोसा रखें। इंसान के हाथ में और है भी क्या, जहाँ दवा काम नहीं आती है वहाँ दुआ ही काम आती है। अच्छा चलो,
2: फिर आइएगा भाई जी।
0: जरूर, खुदा हाफिज़।

0: रंजना बेटी, बताओ तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया? अंदाज लगाओ तो जानू।
1: बताइए ना अंकल, प्लीज।
0: मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए खत, तुम्हारे नाम।
1: किसका है अंकल?
0: शमीम का।
1: सच?
0: एकदम सच। लो पढ़ो।
1: नहीं, आप ही पढ़िए।
0: अरे तुम तो ऐसे शर्मा रही हो कि। अच्छा अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है शमीम ने, प्यारी रंजना, मुझे अब्बा जान के खत से तुम्हारे बारे में सारी बातें मालूम हुई। अब्बा ने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया वो सब सच है। मैं भी अपनी जिंदगी से बेहद नफरत करने लगा था।
2: अब्बा और अम्मा मुझे बहुत समझाते थे। धीरे धीरे मैंने जिंदगी से प्यार करना और उसे जीना सीख लिया। जानती हो, देखते ही देखते मेरी तबीयत सुधरने लगी और मेरा मन स्वस्थ होने लगा। फिर मन की ताकत ने जिस्म के भीतर छिपी बैठी उस भयानक बीमारी को खत्म कर डाला। मुझे पूरा यकीन है तुम अच्छी हो जाओगी। जिंदगी तुम्हारे पास ही खड़ी है।

0: तुम्हारी नफरत से सहमी सी डरी हुई, उसे अपनी बाजू में भर लो, बेइंतहा प्यार करो। मुझे खत लिखना हाँ, मैं तुम्हारे खत का इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा शमीम। मुझे खत लिखना हाँ, मैं तुम्हारे खत का इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा शमीम।
1: बेटी क्या है माँ, कहाँ खोई हो बेटा? सोच रही थी कई दिनों से पोस्टमैन अंकल नहीं आए, लगता है डॉक्टर अंकल आ गए। देखती हूँ। डॉक्टर साहब आप, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते।
1: मैं आपको आज याद कर ही रही थी।
2: असल में कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। हाउ इज रंजना?
1: सुधार है डॉक्टर साहब, अब वो दवा भी लेती है।
2: गुड न्यूज, चलिए उससे मिल लें।
1: आइए।
2: हेलो यंग गर्ल, हाउ आर यू?
1: फाइन डॉक्टर अंकल।
2: क्यों बेटे, आज भी हमें यहाँ से भगाने के इरादा तो नहीं है?
1: प्लीज अंकल, आई एम सॉरी।
2: हाँ तो बेटे, मैं तुम्हें जरा एग्जामिन कर लूँ?
1: मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ।
2: श्योर। जरा आंखें देखूं।

0: आखिर वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी?
1: प्लीज प्लीज धैर्य रखिए, एक न एक दिन तो ये होना ही था।
2: बहन, हमें यह सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी, खुदा को यही मंजूर था।
0: लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, इधर तो वो खुश रहती थी, जैसे जैसे फिर से जीने लगी थी, फिर अचानक उसकी मौत।
1: हाँ, मानसिक रूप से वो जरूर खुश थी, लेकिन भीतर कैंसर,
2: कैंसर उसके जिस्म में ही नहीं बल्कि दिलो दिमाग में बेतरह फैल रहा था, इसीलिए अपनी जिंदगी से बेहद नफरत करने लगी थी। उसकी नफरत को प्यार में बदलने के लिए ही मुझे उसके सामने इतना नाटक करना पड़ा।
0: नाटक?
1: नाटक? क्या कह रहे हैं आप?
2: हाँ, नाटक। रंजना बिटिया को फिर से जिंदगी से जोड़ने के लिए मुझे अपने बेटे शमीम को जिंदा करना पड़ा।
0: तो क्या भाई जी?
2: हाँ बहन, मेरा बेटा शमीम कब का मर चुका है, कैंसर से, नफरत से। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी ही अधूरी और दर्दनाक मौत रंजना भी मरे।
1: शमीम।
3: बेटी, क्या है माँ, कहाँ खोई हो बेटा? सोच रही थी, कई दिनों से पोस्टमैन अंकल नहीं आए।

0: आइए भाई। रंजना कई दिनों से आपको बार बार पूछ रही थी।
1: दरअसल मेरी तबीयत जरा ढीली हो गई थी, उतरती उम्र है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। रंजना बेटी कैसी है?
0: पहले से अच्छी है, अब कम से कम उसकी बीमारी दिलो दिमाग पर हावी नहीं है।
1: अल्लाह की मेहरबानी,
0: ये आपकी कोशिशों से ही हुआ है। मैं किस तरह आपको धन्यवाद दूं?
1: कैसी बात करती हो बहन, मैंने किया ही क्या है? उसे यही समझाया कि जिंदगी से नफरत मत करो, नफरत इंसान को वक्त से पहले ही मार डालती है। वो तो एक आग है, सब कुछ जलाकर खाक कर डालती है। मौत को कौन टाल सकता है, लेकिन एक नफरत भरी

0: जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी।
1: बेटी, मुझे बुखार आ गया था, बिस्तर से उठ नहीं पाया।
0: सॉरी अंकल, असल में मैंने शमीम के पत्र का जवाब लिखा है, इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी। सुनेंगे अंकल?
1: जरूर सुनूंगा। हाँ सुनाओ।
0: प्रिय शमीम जी, आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। पहले सच मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि आप कैंसर होने पर भी बच गए, लेकिन जब आपका पत्र पढ़ा तो विश्वास होने लगा। मैं जीना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मौत को अपनी ओर बढ़ते देखकर डर जाती थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं उससे नफरत करने लगी थी। पर अब मैं आपकी तरह ज़िंदगी से प्यार करने लगी हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं अपने रोग से, मौत से लड़ सकती हूँ। शायद मैं अच्छी हो रही हूँ, डॉक्टर अंकल भी यही कह रहे थे। पोस्टमैन अंकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अब धीरे धीरे सब लोग अच्छे लगने लगे हैं। आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है। मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को देखना चाहती हूँ जो कैंसर से ठीक हुआ है। अच्छा, अब पत्र समाप्त करती हूँ। इसका जवाब ज़रूर लिखिएगा, इंतज़ार करूँगी। आपकी रंजना।
1: शाबाश बेटे, बड़ा ही खूबसूरत सा खत लिखा है तूने। मुझे दो, मैं इसे शमीम के पास भेज दूँगा।
0: लीजिए अंकल, इसे जल्दी भेज दीजिएगा।
1: इसे अभी भेजता हूँ, तो चलूँ बिटिया।
0: माँ शायद आपके लिए चाय ला रही होंगी।
1: उस कमरे से पीता जाऊँगा।
0: अच्छा अंकल।

0: प्रिय रंजना, तुम्हारा पत्र मिला बहुत अच्छा लगा। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि तुम अब ठीक हो रही हो। मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी दोबारा हंसी खुशी से भर उठेगी, वो फिर खिलेगी, खिल खिलाएगी। तुम्हारा शमीम।
1: प्रिय शमीम, तुम्हारी चिट्ठी मिली ये जानकर मैं सच झूम उठी कि तुम आ रहे हो। मैं तुम्हारा इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही हूँ। जल्दी आना प्लीज, तुम्हारी रंजना।
0: वो फिर खिलेगी, खिल खिलाएगी। तुम्हारा शमीम।
1: मैं तुम्हारा इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही हूँ। जल्दी आना प्लीज, तुम्हारी रंजना।
0: तुम्हारी जिंदगी दोबारा हंसी खुशी से भर उठेगी,
1: बड़ी
0: वो फिर खिलेगी, खिल खिलाएगी। तुम्हारा शमीम।
1: तुम्हारी रंजना।
0: हेलो रंजना।
2: हेलो शमीम, मैं पहचान गई।
0: बिल्कुल ठीक पहचाना, कैसी हो तुम?
2: मैं तो अब ठीक हूँ। कब आए?
0: थोड़ी देर पहले ही पहुँचा, घर में सामान पटका और सीधे तुमसे मिलने भाग आया।
2: थैंक यू शमीम, तुम आ गए। आई एम रियली सो हैप्पी।
0: देखो भाई, मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा।
2: कौन सा प्रॉमिस?
0: तुमने लिखा था ना कि मेरे आने पर तुम मेरे साथ घर से बाहर निकलोगी, हम घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पिक्चर देखेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिएंगे।
2: लेकिन मैं...
0: लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कल से हम घर में नहीं रहेंगे। ओके, आज मैं जा रहा हूँ, कल तैयार रहना। बाय
2: बाय शमीम।

0: रंजना
1: शमी
0: रंजना रंजना चलते चलते और मजा आया ना, कह रहा था चलो आगे और थोड़ी दूर क्या हुआ? अरे रुक गए।
1: अरे शमीम, अरे बाबा मैं और नहीं चल पाऊंगी, मैं और नहीं चल पाऊंगी शमीम।
0: बस बस थोड़ी दूर और
1: नहीं,
0: थोड़ी दूर और
1: नहीं।
0: वो रहा हमारा मुकाम, वो देखो।

0: आखिर वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी?
1: प्लीज प्लीज धैर्य रखिए, एक न एक दिन तो ये होना ही था।
2: बहन, हमें यह सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी, खुदा को यही मंजूर था।
0: लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, इधर तो वो खुश रहती थी, जैसे जैसे फिर से जीने लगी थी, फिर अचानक उसकी मौत।
1: हाँ, मानसिक रूप से वो जरूर खुश थी, लेकिन भीतर कैंसर।
2: कैंसर उसके जिस्म में ही नहीं बल्कि दिले दिमाग में बेतरह फैल रहा था, इसीलिए अपनी जिंदगी से बेहद नफरत करने लगी थी। उसकी नफरत को प्यार में बदलने के लिए ही मुझे उसके सामने इतना नाटक करना पड़ा।
0: नाटक?
1: नाटक? क्या कह रहे हैं आप?
2: हाँ, नाटक। रंजना बिटिया को फिर से जिंदगी से जोड़ने के लिए मुझे अपने बेटे शमीम को जिंदा करना पड़ा।
0: तो क्या भाई जी?
2: हाँ बहन, मेरा बेटा शमीम कब का मर चुका है, कैंसर से, नफरत से। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी ही अधूरी और दर्दनाक मौत रंजना भी मरे, इसलिए मैंने खुद उसे शमीम के खत लिखे, उसके जहन में शमीम को पैदा किया। मैंने उसे शमीम की इतनी बातें की को शमीम के वजूद को अपने भीतर महसूस करने लगा। वो अपनी कल्पना में उसे मिलती थी, बातें करती थी। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे माफ करें।
0: भाई जी,
1: नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि वो कर दिखाया जो हमारा मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है।
0: भाई जी, आपने असल में रंजना को मौत नहीं, जिंदगी दी है।
2: यही तो मैं चाहता था। यदि उसकी मौत हम नहीं रोक सकते हैं, तो जिंदगी से उसे जोड़ तो सकते हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी जीने का भरपूर एहसास लेकर मर सके। खुदा उसके रूह को सुकून।

एहसास, अभी आप सुन रहे थे ये नाटक। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत बस थोड़ी ही देर में।

0: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, पर आरोग्यम केयर हॉस्पिटल है तैयार अपनी 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा और पैथोलॉजी सर्विस के साथ, क्योंकि इमरजेंसी के नाजुक पलों की कीमत समझते हैं हम।
1: हर इमरजेंसी में आए आरोग्यम केयर हॉस्पिटल एट दयाल सेंटर, शेर पंजाब चौक, आदित्यपुर। आपकी मुस्कान हमारी पहचान।
2: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाजों में आपने सुना फिल्म धड़कन का ये गीत। गीत के बोल समीर ने लिखे थे और संगीत नदीम श्रवण ने बनाई थी।
1: कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुनिए आज रात 8 बजे आपके साथ होंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक।

आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना मनहर उदास की आवाज थी। बोल लिखे थे निदा फाजली ने और संगीत उषा खन्ना ने बनाई थी। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म हल्का का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर महादेवन की आवाज़ थी, बोल लिखे थे प्रतीक मजूमदार ने और संगीत शंकर एहसान लॉय ने बनाई थी।

फिल्म जबरिया जोड़ी का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाजें थी। बोल लिखे थे सिद्धार्थ गरिमाने और संगीत सचेत परंपरा और कल्याण बरुआ का था। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत।

0: शिवाय व्यास की आवाज में आपने सुना है फिल्म रेस 3 का ये गीत। गीत के बोल शैंकी और शिवाय व्यास ने लिखे थे और संगीत दिया था निर्मल्य हम टू डी ने। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4
1: यानी 549 किलोहर्ट्ज।
0: सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज मधुबन में गिरिडीह ग्रामीण और कोडरमा जिले के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कोई पहली बार नहीं हो रहा है। गिरिडीह जिले के मधुबन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि यह काम भाजपा के शासनकाल में चुनाव आयोग करवा रहा है। आदित्यपुर स्थित RIT थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में नाबालिग के साथ अपहरण एवं दुष्कर्म के चर्चित मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत 3 दोषियों को 25-25 वर्ष कारावास एवं 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सिमडेगा में वन विभाग ने अवैध वन उपज कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 22,00,000 रुपए मूल्य का अवैध केंदू पत्ता जब्त किया है। गुप्त सूचना मिलने पर DFO शशांक शेखर की टीम ने गठन कर सिमडेगा के बांसजोड़ में ट्रक की जांच की गई। इस संबंध में वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस भवन रांची में मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में अवैध गौवंशीय पशुओं के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर कपाली क्षेत्र के अलग अलग 6 से 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी का अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित अंचल के दंडाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर तथा ओपी प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
3: इमरजेंसी में सही इलाज और सही दाम दोनों है जरूरी, इसीलिए आरोग्यम केयर हॉस्पिटल दे रहे हैं ICU बेड चार्जेस सिर्फ ₹3,500 में, वो भी हाईली एक्सपीरियंस्ड इंटेंसिविस्ट की देखरेख में।
4: आरोग्यम केयर हॉस्पिटल, दयाल सेंटर, शेरे पंजाब चौक, आदित्यपुर। आपकी मुस्कान हमारी पहचान।
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हमारे युवा दोस्तों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कभी कभी लगता है ना कि देश सिर्फ नक्शों से नहीं बनता, देश बनता है लोगों से, उनकी सोच से, उनके सपनों से, और सबसे ज़्यादा युवाओं से। एक युवा जो सवाल पूछता है, जो बदलाव चाहता है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी कुछ करना चाहता है। लेकिन हर दौर की अपनी चुनौतियाँ भी होती है, कहीं जिम्मेदारियाँ हैं, कहीं फैसले, तो कहीं खुद की पहचान बनाने की कोशिश, और शायद इसी सफ़र का नाम है युवा जीवन। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जमशेदपुर केंद्र के FM 102.4 MHz पर आप सुन रहे हैं युववाणी, और मैं हूं सिमरन कुमारी। आज अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे कुछ ऐसे विचारों की जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी और देश के भविष्य से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। श्रोताओं, जब भी आधुनिक भारत की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनकी सोच सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं थी बल्कि आने वाले भारत को लेकर भी थी। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में की, लेकिन विदेशों में पढ़ाई करने के बावजूद उनका जुड़ाव हमेशा भारत और यहाँ के लोगों के साथ बना रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का हिस्सा बने। नेहरू जी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थे, वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जो आधुनिक हो, शिक्षित हो और विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़े। वे मानते थे कि किसी भी देश की असली ताकत उसके युवा होते हैं, इसी वजह से वे युवाओं और बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। उनका बच्चों के प्रति स्नेह ही था कि आज भी उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने देश में बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डैम्स और इंडस्ट्रीज की स्थापना को बढ़ावा दिया। वे चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा हो। कई बार एक इंसान सिर्फ अपने सपने के लिए नहीं सोचता, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाता है, और शायद नेहरू जी भी उन्हीं लोगों में से एक थे। आज भी उनकी विचारधारा युवाओं को ये सिखाती है कि शिक्षा, जागरूकता और सोच ही किसी देश की असली ताकत होती है। इसी प्रेरणा के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

फिल्म राजी से आपने सुना ये गीत ए वतन। इस गाने के गीतकार है गुलजार, गायक है सुनिधि चौहान और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय। श्रोताओं, किसी भी देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सपने काफी नहीं होते, बल्कि सही जानकारी और लोगों की भागीदारी भी जरूरी होती है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला विषय, जनगणना और युवाओं की भूमिका। अक्सर लोग जनगणना को सिर्फ पॉपुलेशन काउंट समझते हैं, लेकिन असल में यह देश की योजनाओं और विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होती है। जनगणना से सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि कहाँ स्कूलों की ज़रूरत है, कहाँ रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं और किन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ कम हैं। यानी देश की कई बड़ी योजनाएँ जनगणना से मिली जानकारियों पर आधारित होती है और यहाँ युवाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के युवा टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। वे लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने और जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कई बार गाँव और छोटे क्षेत्रों में लोग जनगणना के महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाते। ऐसे में युवा जागरूकता फैलाने का काम कर सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं को खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि देश का विकास सिर्फ सरकारों से नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों से भी होता है। अगर युवा अपनी जिम्मेदारियों को समझे और समाज के प्रति संवेदनशील बने तो वे देश को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और शायद यही एक मजबूत और विकसित भारत की पहचान भी है। इसी सकारात्मक सोच के साथ सुनते हैं अगला गीत।

अभी आपने सुना संजू फिल्म का ये गाना करहर मैदान फतेह। इसके गायक है सुखविंदर सिंह, गीतकार है शेखर अस्तित्व और संगीतकार है विक्रम मोंट्रोज़।

श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो समाज, देश और अपने भविष्य को लेकर भी सोचता है। और शायद इसी वजह से आज राजनीति में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। पहले राजनीति को सिर्फ नेताओं तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब युवा अपनी राय रखना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं और बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने युवाओं को अपनी आवाज़ रखने का एक नया माध्यम दिया है। युवा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वॉर्मेंट और सोशल इश्यूज जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में भागीदारी के साथ जागरूकता और सही जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ओपिनियंस होना काफ़ी नहीं बल्कि सही तथ्यों को समझना भी ज़रूरी है। एक जागरूक युवा सिर्फ अपने भविष्य को नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। आज कई युवा राजनीति और सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों की समस्याओं को समझने और उनके बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है, जहां युवा सिर्फ दर्शक बनकर ना रहे बल्कि जिम्मेदारी के साथ अपनी भागीदारी निभाए। क्योंकि बदलाव हमेशा सवाल पूछने वालों से शुरू होता है, और शायद आज का युवा वही बदलाव बनना चाहता है।

0: श्रोताओं, युवा और राजनीति को लेकर अलग अलग लोगों की अपनी सोच और अपने विचार होते हैं और अब इसी विषय पर जानते हैं कुछ युवाओं की राय कि वे राजनीति और युवाओं की भागीदारी को किस नजरिए से देखते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम सुभाष वर्मा है, मैं आदित्यपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज के समय में राजनीति और युवाओं का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। पहले ऐसा माना जाता था कि राजनीति सिर्फ नेताओं या बड़े लोगों तक सीमित होती है, लेकिन अब युवा भी देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने लगे हैं। आज का युवा जागरूक है, वह शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पर्यावरण और सोशल इशू जैसे विषयों पर सोचता भी है और अपनी आवाज भी उठाता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने युवाओं को अपनी बात रखने का एक नया माध्यम दिया हुआ है। अब युवा देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहते हैं और हर विषय पर अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि सिर्फ ओपिनियन होना काफ़ी नहीं होता, सही जानकारी और जागरूकता भी उतनी ही जरूरी होती है। कई बार बिना पूरी जानकारी के लोग किसी भी बात को सच मान लेते हैं या फिर सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हैं, जो चल रहा है उसी को चलाते रह जाते हैं। ऐसे में युवाओं को फैक्ट्स और रियलिटी को समझकर अपनी सोच बनाने की ज़रूरत है या फिर उन्हें अपनी इस प्रकार की सोच बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति को सिर्फ बहस या आर्गूमेंट्स तक नहीं देखना चाहिए। असल में राजनीति देश के विकास, लोगों की समस्याओं और समाज में बदलाव से जुड़ी होनी चाहिए या फिर जुड़ी होती है। अगर युवा जिम्मेदारी और समझदारी के साथ राजनीति में भाग ले तो वे देश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आज देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो सिर्फ शिकायत न करें बल्कि समाधान के बारे में सोचें। वे सोचें जैसे गांधी जी का जो कोट्स है कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह बदलाव पहले स्वयं में लाएं। तो उसी प्रकार से आज के युवाओं को यह जरूरत है कि वह सिर्फ शिकायतें नहीं करें, सिर्फ वह प्रॉब्लम नहीं गिनाएं बल्कि उनके सॉल्यूशन पर भी काम करें, समाधान के बारे में भी सोचें, क्योंकि एक जागरूक और जिम्मेदार युवा ही देश की बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है और शायद यही एक मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान भी होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जोहार।
0: तो ये थे युवा के विचार, जिनसे ये साफ समझ आता है कि आज का युवा सिर्फ अपने भविष्य ही नहीं बल्कि देश और समाज को लेकर भी जागरूक है और शायद यही जागरूकता एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान भी है। और इसी के साथ आइए सुनते हैं एक गीत।
2: चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम जगडुम चिकिचकचो

0: अभी आपने सुना तारे जमीन पर फिल्म से ये गाना। इस गाने के गीतकार है प्रसून जोशी, गायक है शान और आमिर खान और संगीतकार है शंकर महादेवन एहसान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अब समय हो गया है समसामयिक गतिविधियों से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खेल जगत में भारतीय युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं देश में टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और डिजिटल सेक्टर में लगातार नए अवसर बढ़ रहे हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं भारत ने पहली बार वर्ल्ड योगा सना चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत की है, जिसे ग्लोबल लेवल पर भारतीय योग संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर भी चर्चा तेज है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल कोऑपरेशन पर जोर दिया। इसके साथ ही ब्रिक्स मंच पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार और वैश्विक संस्थाओं में बराबरी की भागीदारी की आवश्यकता पर भी बात रखी।

कहते हैं, हर पीढ़ी अपने समय की एक नई कहानी लिखती है, और आज आज की युवा पीढ़ी भी अपने सपनों, अपनी सोच और अपने प्रयासों से एक नया भारत बनाने की कोशिश कर रही है। बस ज़रूरत है सही दिशा, जागरूकता और खुद पर विश्वास बनाए रखने की। तो श्रोताओं, आज के युवाणी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ सिमरन कुमारी और अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।

इमरजेंसी में सही इलाज और सही दाम दोनों है जरूरी, इसीलिए आरोग्यम केयर हॉस्पिटल दे रहे हैं आईसीयू बेड चार्जेस सिर्फ ₹3,500 में, वो भी हाईली एक्सपीरियंस्ड इंटेंसिविस्ट की देखरेख में।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

कल कारखाने सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को स्नेहलता का नमस्कार। श्रोता साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में।

श्रोता साथी, गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप, गर्म हवाएं, पसीना, थकान और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में अगर हम अपने खान पान और दिनचर्या का सही ध्यान रखें तो इस मौसम को भी स्वस्थ और आनंददायक बनाया जा सकता है। गर्मियों में हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। बहुत अधिक तेल मसालों से भरपूर खाना, जंक फूड, तला भुना भोजन पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, तो ज़रूरी है कि इनकी जगह दाल, हरी सब्जियां, दही, सलाद और घर का ताज़ा बना भोजन अधिक फायदेमंद होता है।

श्रोताओं, शरीर को ठंडक पहुंचाने और ऊर्जा प्रदान करने वाले पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, बेल का शरबत, सत्तू का शरबत और ताजे फलों के जूस, इन्हें अपने आहार में शामिल करना जरूरी है ताकि गर्मी के मौसम की तपिश से स्वयं को संतुलित रखा जा सके। तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूज, आम, लीची, पपीता, संतरा जैसे मौसमी फल इस मौसम के सच्चे साथी हैं। ये शरीर को हाइड्रेट रखते हैं जिससे शरीर की पानी की कमी पूरी होती है और जरूरी पोषक पदार्थ भी प्राप्त होता है। श्रोताओं, पहनावे का भी विशेष ध्यान रखना होता है गर्मी में ताकि शरीर को आराम मिले। बहुत ज़्यादा देर तक अनावश्यक धूप में नहीं रहना, बाहर निकलते समय भरपूर पानी का सेवन और साथ में पानी का बोतल अवश्य रखना चाहिए। शरीर का इतना ख्याल मौसम के अनुसार करना ही चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और स्वस्थ जीवन का आधार मौसम अनुसार संतुलित आहार है।

0: के साथ साथ,
1: अरे रे रे,
0: घटा के संग संग,
1: संभालना,
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

सीता और गीता फिल्म में अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को। शब्द रचना थे आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन था आर डी बर्मन का।

बड़े श्रोताओं कार्यक्रम में आगे लेते हैं जानकारी भेंटवार्ता के जरिए। विषय है हृदय चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीक। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर महावीर मंदार साह। आइए सुने ये भेंटवार्ता। श्रोता साथी, हमारे शरीर का बेहद ही खास हिस्सा है हमारा दिल, जिससे हम सभी प्यार करते हैं। लेकिन जब बात दिल के सेहत की आती है तो हम बहुत

0: कुछ नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही हमें भारी भी पड़ जाती है। श्रोताओं, दिल की सेहत बहुत सी चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन अक्सर लोग दिल को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी पाल लेते हैं और आजकल हृदय रोग तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये लगातार सुनने में आ रहा है। और आपको बताएं श्रोताओं, अक्सर हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आज जानेंगे विशेषज्ञ की राय हृदय से संबंधित। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मंदार महावीर साह को, जो TMS जमशेदपुर के हृदय रोग विभाग के प्रमुख हैं। इनसे हम लेंगे जानकारी हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकों के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस कल कारखाने के आंगन में। नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। सभी श्रोताओं को वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष पे हार्दिक शुभकामनाएं।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किन लक्षणों को देखकर ये विचार में आना चाहिए, लोगों को ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति को हृदय संबंधी शिकायत हो रही है।
1: सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हृदय एक मशीन है, तो वो हृदय रोग कोई एक रोग नहीं है, अनेक रोग उससे हो सकते हैं। तो उसमें कॉमन लक्षण यही होते हैं कि अगर नस में कोई ब्लॉकेज है तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है, हेवीनेस इन चेस्ट, या फिर गैस एसिडिटी जैसे लक्षण हो सकते हैं, लेफ्ट आर्म पेन हो सकता है, जॉज में पेन हो सकता है, पीठ में पेन हो सकता है, साथ ही साथ पसीना आ सकता है। और ये सारी चीज़ें अगर आपको चलते वक्त, फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त होती है और विश्राम लेते ही उसमें आराम होता है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। साथ ही में कई हार्ट की बीमारियां ऐसी होती है जिसमें सांस फूलने की बीमारी हो सकती है, सांस फूल सकते हैं, दम लग सकता है, कुछ कुछ कंडीशंस में आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, उसको हमारे लैंग्वेज में पाल्पिटेशंस बोलते हैं
0: जी।
1: और कई हार्ट के पेशेंट्स को पैर पे सूजन आ सकती है, और कभी कभार हार्ट के पेशेंट्स को हमारे लैंग्वेज में सिनकपी बोलते हैं, दैट मीन्स कुछ क्षण के लिए आदमी बेहोश हो जाता है और कुछ क्षण के बाद वो वापस होश में आ जाता है, इस कंडीशन को सिनकपी बोलते हैं। तो ये सारी लक्षण है हार्ट से रिलेटेड कोई अबनॉर्मलिटी होने की। इसमें से कुछ भी तकलीफ अगर है तो मरीज ने फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, हृदय रोग की परेशानी आजकल लोगों में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कारण क्या है?
1: एकदम सही ऑब्जर्वेशन है कि हृदय रोग समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है
0: जी।
1: और हैरानी की बात तो ये है कि यंग लोगों में आजकल हार्ट अटैक्स आना चालू हो गए हैं। पहले हम जब मेडिकल स्कूल में हुआ करते थे तब हमें सिखाया जाता था कि 40-45 के अंदर अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो आप हार्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए, लेकिन आजकल वो स्थिति नहीं रही है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, स्ट्रेस अपने लाइफ में आने लगा है, हर जगह पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन सभी चीजों से भी हार्ट की बीमारियां बढ़ने लगी है। लोग कुछ गलत हैबिट्स के अधीन हो रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग, तंबाकू, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है, लैक ऑफ स्लीप, ये सारे रीजंस है जिसके कारण हार्ट की बीमारियां बढ़ रही है। साथ में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल इत्यादि कारण है जो पेशेंट्स को हृदय रोग की तरफ लेके जाते हैं।
0: बिल्कुल, मतलब बहुत सारी वजहें हैं जो लोगों में आजकल ये परेशानी बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, यदि हृदय से संबंधित समस्या हो जाए तो चिकित्सीय सहायता तो लेने हम पहुंचेंगे ही, लेकिन उससे पहले कोई फर्स्ट एड, कोई प्राथमिक चिकित्सा जो हम घर में कर सके, कोई ऐसा विकल्प है क्या?
1: जी हाँ, कुछ चीजें हर एक आदमी ने ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपके घर वालों को किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है
0: जी,
1: तो सबसे पहली चीज है कि उनको जितना रेस्ट दे सकते हैं उतना रेस्ट देने का है, उनको चलने नहीं देने का है, सीढ़ी चढ़ने नहीं देने का है, वजन उठाने नहीं देने का है, जितना मैक्सिमम रेस्ट ले सकते हैं उतना रेस्ट लेना है। अगर इजीली अवेलेबल है तो एक एस्पिरिन की टैबलेट 325 मिलीग्राम की पानी में घोल के आप दे सकते हैं, और घर पे अगर है तो एक क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम और अटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम। हम आमतौर पे बोलते हैं कि जो कोई भी हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है, ऐसे हर फैमिली में ये तीन मेडिसिन एक पैकेट बना के रखनी है, जस्ट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी जब आपको शक आता है कि इनको हार्ट अटैक शायद से हो रहा है तो डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले ये तीन टैबलेट देके मिनिमम एक्सर्शन किए बगैर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए।
0: ये तीन दवा जो है आप घर में नॉर्मली रखें, सामान्य रूप से आप घर में रखें,
1: हर यदि रखने की जरूरत नहीं है
0: जी,
1: लेकिन आप आपके डॉक्टर से, जनरल प्रैक्टिशनर से या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके आपका और आपके फैमिली का रिस्क प्रोफाइल असेस कर सकते हैं।

0: और जो पेशेंट्स हाई रिस्क है जिनको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है
1: जी,
0: उन सभी फैमिलीज में ये मेडिसिन रखना बेटर है।
1: अच्छा, विशेषज्ञ से मिले, उनसे जान ले कि ये दवा रखनी है या नहीं रखनी है और फिर आप इस दवा को अपने घर पे रखें। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ेंगे और आपसे ये जानेंगे कि हृदय रोग के आधुनिक उपचार क्या है और हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं, कौन कौन सी नई तकनीकें आई हैं।
0: जी हाँ, तो पिछले कुछ सालों में हृदय रोग के फील्ड में बहुत सारी आधुनिक तकनीकें आई हुई हैं जिससे पेशेंट का इलाज करना काफी हद तक सेफ भी हो गया है और पहले जो इलाज संभव नहीं थे वो अभी सारे हम कर पा रहे हैं। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में तो आम तौर पे सारे लोगों को जानकारी होती है कि एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जो आपके हार्ट के आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है वो टेस्ट करती है, और अगर कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है यानी सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज यानी 75% के ऊपर का ब्लॉकेज कोई मेन आर्टरी में है तो उसको फिक्स करने के लिए हम वहाँ पे बलून डाल के वो ब्लॉकेज को बड़ा कर देते हैं और उसमें एक स्प्रिंग डालते हैं, उसको स्टेंट बोलते हैं
1: जी।
0: और ये पूरे प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी पिछले कई डिकेड्स से चली आ रही टेक्निक्स हैं, लेकिन उसमें भी आजकल काफी सारी आधुनिक एडवांसमेंट्स हो गए हैं, जैसे कि आजकल इमेज गाइडेड, अच्छा। इमेजिंग गाइडेड मतलब जैसे आप नॉर्मल सोनोग्राफी करते हैं वैसे हम आर्टरीज के अंदर जाके आर्टरीज के अंदर की सोनोग्राफी करते हैं, उसको इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या आईवस बोलते हैं। सिमिलरली उसी का दूसरा एडवांसमेंट है उसको हम ओसीटी बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। तो इसमें
1: क्या होता है,
0: ब्लड वेसल्स के अंदर का स्ट्रक्चर्स हम बाहर से देख सकते हैं।
1: अच्छा,
0: उससे हम लोगों को लीजन असेस करने में कितना साइज का स्टेंट लगेगा, कौन से एरिया में स्टेंट डालना सही रहेगा, स्टेंट डालने के बाद स्टेंट एडिक्वेटली एक्सपांड हो गया है या नहीं एक्सपांड हो गया है, ये सारी जानकारी पता चलती है। अगर वेसल के अंदर कैल्शियम जमा हुआ है तो उसका एक्सटेंट क्या है, ये सब चीजें देख के हम अपना स्ट्रैटेजी फर्दर रिफाइन कर सकते हैं, जिससे एंजियोग्राफी पहले के मुकाबले काफी हद तक आजकल सेफ हो गई है। साथ ही में एंजियोप्लास्टी में पहले अगर वेसल्स में कैल्शियम जम जाता था, यानी कि नॉर्मल आर्टरीज बहुत इलास्टिक होती है, प्लायबल रहती है, लेकिन अगर उसमें कैल्शियम जम जाता है तो आर्टरीज बहुत हार्ड हो जाती है।
1: अच्छा।
0: तो ये हार्ड कैल्सिफाइड आर्टरीज में एंजियोप्लास्टी करना आज से कुछ साल पहले तक बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आजकल कई सारी नई तकनीक आ गई है जिसके कारण कैल्सिफाइड वेसल्स में भी जो पहले बाईपास को भेजना पड़ता था आजकल एंजियोप्लास्टी के सहारे उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि एक रोटाब्लेशन नाम मशीन आती है जो आर्टरीज के अंदर ड्रिल करता है और कैल्शियम को निकाल देता है। उसी तरह कुछ स्पेशल बलून्स है जैसे कि ओपीएन बलून नाम का एक बलून है जो बहुत हाई प्रेशर पे हम नस को बड़ा कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: या फिर एक इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी बलून बोल के होता है, जैसे आपने सुना होगा कि किडनी में अगर कोई स्टोन हो गया है तो वो शॉक वेव्स देके स्टोन को बारीक बारीक पार्टिकल्स में क्रश करके उसको निकाल देते हैं।
1: अच्छा।
0: उसी तरह से हार्ट के आर्टरीज के अंदर अगर कोई कैल्शियम है तो वो कैल्शियम को ये इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी बलून IVL बलून कैल्शियम को ब्रेक करता है जस्ट बाय पासिंग अल्ट्रासाउंड वेव एट हायर फ्रीक्वेंसीज। तो ये सारी एडवांसमेंट्स हो गई है एंजियोप्लास्टी के तकनीक। और एक चीज है उसको बोलते हैं FFR मतलब फ्रैक्शनल फ्लोरिंग। तो अगर 90% ब्लॉकेज है मेन आर्टरी में तो वो तो विजुअली आप देख सकते हैं और उसमें कोई भी बता सकते हैं कि इसमें स्टेंट डालना जरूरी है, लेकिन कई बार लीजन्स बॉर्डरलाइन होते हैं जैसे कि 60% का 70% का लीजन है वेयर स्टेंट डाले या ना डाले ये दुविधा होती है, तो उसको ऑब्जेक्टिव एविडेंस लाने के लिए एक फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व बोल के एक टेस्ट होती है। एक एंजियोप्लास्टी जैसा ही वायर होता है उसके टिप पे एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर रहता है, तो ब्लॉकेज के पहले का और ब्लॉकेज के बाद का प्रेशर हम नापते हैं और अगर सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्रेशर होता है तो इसका मतलब वो ब्लॉकेज टाइट है और फिर वो विजुअली आपको अगर 60% भी लगता है तो भी उसमें स्टेंट डालना जरूरी है।
1: मतलब ये जो तकनीक है काफी हद तक की जांच कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं,
0: सेफली अच्छे से इलाज कर सकते हैं।
1: हाँ, जो सेफली आपने कहा इसी पर मैं सवाल पूछ रही थी अभी, देखिए क्या ये पद्धति कारगर है आज के टाइम में, आप साथ ही क्या ये सुरक्षित भी है?
0: एकदम सुरक्षित है, इनफैक्ट कई स्टडीज ने ये दर्शाया है कि नॉर्मल एंजियोप्लास्टी के मुकाबले अगर हम ये इमेज गाइडेड एंजियोप्लास्टी करते हैं या FFR गाइडेड एंजियोप्लास्टी करते हैं, हर जो ब्लॉक दिखे उसमें स्टेंट ना डाल के जिसमें एब्सोल्युटली जरूरी है उसमें ही डालते हैं तो लॉन्ग टर्म आउटकम्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसके कई गुना बेहतर।

0: सर होते हैं इन टेक्निक्स को यूज़ किए बगैर एंजियोप्लास्टी करने के मुकाबले। सो ये इनफैक्ट ये बनाई इसके लिए है कि आपकी प्रोसीजर ज्यादा सेफ हो।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर शॉर्ट सर्किट की समस्या भी सुनने में आ रही है, ये क्या चीज है?
0: जी हाँ, जैसे मैंने बोला कि हार्ट पंप करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्ट से फ्लो होते हैं
1: जी।
0: कभी कभार एक आधा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल वायर हार्ट के अंदर हो सकता है और उसके कारण हार्ट के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, जिससे दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है। आमतौर पर दिल की धड़कन 60-100 के बीच में होती है, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग होने के कारण दिल की धड़कन 160, 180, 200, 250 इतनी बढ़ सकती है। तो इस कंडीशन को टैकीअरिथमियाज बोलते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, और उसका इलाज को रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। तो इसमें हम पैर में से इलेक्ट्रिकल कैथेटर्स हार्ट के अंदर डालते हैं कोई काट छाट किए बगैर, और हार्ट के अंदर का ECG निकालते हैं। एंड देन हार्ट के अंदर का ECG स्टडी करके टू द पॉइंट, टू द मिलीमीटर वी कैन फाइंड आउट कि ये एक्स्ट्रा सिग्नल ये पॉइंट से आ रहा है।
1: जी,
0: हम एक्चुअली हार्ट के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग जैसे पेशेंट को होता है वैसे ही चालू कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी स्टडी करते हैं। एंड देन वंस वी लोकेट कि यहाँ से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल वायर आ रहा है, वो एरिया में रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स डाल के वो एक्स्ट्रा सिग्नल को मिटा देते हैं। पूरे प्रोसीजर को EP स्टडी और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं, एंड इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। और एक बार ये इलाज हो गया तो 99% चांसेस है कि ये बीमारी हमेशा के लिए परमानेंटली मिट जाएगी।
1: अच्छा,
0: तो ये फैसिलिटी भी TMH में अवेलेबल है। इनफैक्ट पूरे झारखंड और राजस्थान स्टेट्स में TMH ही एकमात्र प्लेस है जहाँ पे इन हाउस ये फैसिलिटी अवेलेबल है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक पेसमेकर नाम हमने सुना है, तो ये क्या है और इसमें भी कोई एडवांसमेंट आई है क्या?
0: जी हाँ, पेसमेकर एक डिवाइस है जो हार्ट को आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। तो अपना हार्ट पंप करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्ट से फ्लो होते रहते हैं
1: जी।
0: कभी कभार वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होने में या जनरेट हुए इलेक्ट्रिकल सिंपल्स आगे हर जगह पे पहुंचने में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है
1: जी,
0: तो हार्ट को एडिक्वेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं मिलते। इस सिचुएशन में हार्ट रेट एकदम स्लो हो सकता है, कभी कभार हार्ट थम भी सकता है। तो इस सिचुएशन में पेसमेकर का काम आता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है तो पेसमेकर एक जनरेटर की तरह या UPS की तरह काम करता है। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चालू है, UPS कुछ नहीं करेगा। जैसे वो पता चलेगा कि लाइट चली गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है, वो आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिक सप्लाई करवा देगा।
1: अच्छा,
0: वही थिंग पेसमेकर करता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: और पहले तो सिर्फ सिंगल चेम्बर और ड्यूअल चेम्बर ऐसे पेसमेकर के टाइप्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल काफी सारे एडवांसमेंट्स आ गए हैं। एक लीडलेस पेसमेकर नाम की चीज आ गई है, मतलब जिसमें कोई काट छाट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे एंजियोग्राफी करते एंजियोप्लास्टी करते वैसे ही पैर के एक नस में से एक छोटा सा पंक्चर करके उसके थ्रू हम एकदम कैप्सूल जितना छोटा सा पेसमेकर होता है वो हार्ट के अंदर डाल सकते हैं। हमने जमशेदपुर में पहले किया भी है। कुछ पेसमेकर्स होते हैं जो इमरजेंसी में शॉक देने के काम आते हैं, जैसे लोगों को अगर कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट रेट इतना फास्ट हो जाता है कि जिससे जान को खतरा हो सकता है
1: जी।
0: तो ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी में शॉक देना जरूरी होता है। लेकिन जैसे ही कार्डियक अरेस्ट होता है पहले 2 या 3 मिनट के अंदर शॉक देना जरूरी होता है। अगर कोई पेशेंट घर पे है तो घर से हॉस्पिटल में आएगा और उसके बाद डॉक्टर असेस करेंगे, ECG निकालेंगे, उसके बाद शॉक दे देंगे, तो ये सब
1: काफी देर हो चुकी,
0: 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो पेशेंट्स इस कंडीशन होने के लिए हाई रिस्क है उनके लिए ये स्पेशल टाइप का पेसमेकर होता है, उसको बोलते हैं AICD, ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर।
1: अच्छा,
0: ये पेसमेकर जैसा ही पेसमेकर है, लेकिन उसमें एडिशनल फीचर ये है कि ये जरूरी होने पे हार्ट को शॉक देके हार्ट चालू कर सकते।
1: अच्छा,
0: तो ये AICD है। जिनका हार्ट का पंपिंग कम है वो लो हार्ट का पंपिंग के लिए एक टाइप का स्पेशल पेसमेकर होता है, उसको बोलते हैं CRT, कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। उसमें आमतौर पे 1 या 2 वायर वाला पेसमेकर होता है, सिंगल चेम्बर या ड्यूअल चेम्बर पेसमेकर होता है। CRT जो होता है वो ट्रिपल चेम्बर पेसमेकर होता है, उसमें हार्ट के ऊपर के चेम्बर के साथ दोनों लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में एक एक वायर जाता है, और इसका काम मेनली हार्ट का पंपिंग इम्प्रूव करने के लिए। कुछ लोगों का हार्ट का पंपिंग कम होता है जिससे हाफनी आ सकती है, पैर पर सूजन आ सकती है, तो ये हार्ट का पंपिंग इम्प्रूव करने के लिए ये CRT नाम का एक पेसमेकर है। और अभी हमारा लेटेस्ट एडिशन हो गया है, समथिंग विच इज मोर फिजियोलॉजिकल एंड मोर बेटर देन CRT, ऑल्सो इज कॉल्ड एज LBB पेसिंग, लेफ्ट बंडल ब्रांच पेसिंग, तो ये एक स्पेशल टाइप का पेसमेकर है जो एक्चुअल कंडक्शन सिस्टम जो वायर ब्लॉक हो गई है वही वायर को जाके पेस करता है। इट इज वेरी एफिकेशियस। हमने देखे है कि 20 दिन में लोगों का हार्ट का पंपिंग जो 30% था वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया।
1: ये सारी टेक्निक जो आप बता रहे हैं ये जमशेदपुर में
0: एकदम जमशेदपुर में अवेलेबल है। जो कोई भी अभी तक मैंने बताई वो सारे इलाज जमशेदपुर में हमारे पास TMH में अवेलेबल है और सारे आम लोगों के लिए अवेलेबल है। और मोस्ट ऑफ दीज टेक्निक्स आर फेयरली कॉस्ट इफेक्टिव, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा उसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा।
1: अच्छा, मतलब उतना ज्यादा खर्चीला नहीं है।
0: जितना एडवांसमेंट है जितना सेफ्टी है उसके मुकाबले उसकी कीमत मामूली सी नॉर्मल एंजियोप्लास्टी के मुकाबले ज्यादा है। तो कई सारी टेक्निक्स आ गई है और हम कोशिश करते हैं कि सारी लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज हमारे पेशेंट्स के लिए जमशेदपुर में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। और ऑलमोस्ट अभी जितनी सारी भी चीज़ें बताई वो सारी की सारी आज की घड़ी में भी हमारे लोगों के लिए उपलब्ध है।
1: डॉक्टर साहब, हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीक की बहुत सारी जानकारी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।
1: आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, हृदय चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीक। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर महावीर मंदार साह। हम आपको बता दें इस भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण किया गया।

0: Akashvani at 90.
1: अश्रुतो, इसी के साथ कल कारखाने का आज का यह अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त स्नेहलता को अनुमति। आप सभी को मेरा नमस्कार।

हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्य

क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनिए बस कुछ ही पलों में।
1: झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं कृष्णा कावेरी। आप सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। श्रोताओं लीजिए सुनिए उमापदो मुर्मू के स्वर में सांताली लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संताली लोकगीत, कलाकार थे उमापदो मुर्मू। इसके साथ ही झारखंड के लोकगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिनः।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 500,000,000,000 रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक PDS योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्चन्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेषगहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अङ्गीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपनभङ्गप्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च IPL क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहालीनगरस्य न्यू चण्डीगढ क्रीडाङ्गणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मन्त्रिमण्डल समित्या अद्य 16 वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक PDS इति अम्ब्रेला योजनायाः निरन्तरतायै 30,500,000,000 रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्यसंस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचितमूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिममेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मल इति कृत्रिममेधाचालितः वास्तविकसमय PDS लाभार्थी पञ्जीकरणमञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिममेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारणप्रणाली तथा च नागरिकसंवादमञ्चः वर्तते। एवं च सक्षमः इति कृत्रिममेधायुक्तम् आपूर्तिश्रृङ्खलाप्रबन्धनतन्त्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिकप्रकरणमन्त्रिमण्डलसमित्या राज्यान्तर्गतखाद्यान्नपरिवहनव्ययस्य तथा उचितमूल्यापणविक्रेतॄणां लाभांशसीमायाः पूर्तये केन्द्रीयसहायतानियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववतवित्तपोषणप्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढनिर्णयः कृतः। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य भारतनिर्वाचनायोगेन प्रदत्तं मतदातृसूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेषपुनरीक्षणं निष्पक्षस्वतन्त्रनिर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधि

0: आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आज है दिन बुधवार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत ग्रामीण महिलाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम घर गृहस्थी।

बहनों, आज बुधवार का दिन है और हम उपस्थित हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। बहनों, हम आशा करते हैं कि घर के कामों में व्यस्त होने के बावजूद भी कार्यक्रम घर गृहस्थी आप सब जरूर सुनती होंगी।

आइए सबसे पहले आपको आज के मुख्य आकर्षण से अवगत करवा दें। बहनों, आजकल गर्मी से सब लोग बहुत परेशान हैं। इसी के अंतर्गत आपको एक भेंट वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से कैसे बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार रखें। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर ओम प्रकाश। बहनों, साथी चर्चा का विषय होगा घरों में रसोई यानी एलपीजी और पीएनजी गैस की सुविधा के साथ सावधानी एवं सुरक्षा भी जरूरी है। बहनों, और भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। समय रहा तो गीत संगीत से भी आप सबका मनोरंजन अवश्य करेंगे।

बहनों, बहरहाल आप सबसे कुछ जरूरी बात कर लेते हैं। खुद को कौशल से संपन्न बनाकर हम सब आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बहनों, सरकार भी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत महिलाओं को कौशल का प्रशिक्षण देकर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक स्तरों तथा विभिन्न आयु समूहों की महिलाओं के बीच रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है।

बहनों चलिए, अब आप सबका इंतजार खत्म हुआ, लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता। विषय है, भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से कैसे बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार रखें। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर ओम प्रकाश और इनसे बातचीत कर रही हैं कृष्णा कावेरी।

0: सूर्य की तपिश अपने चरम सीमा पर है। तेज धूप और गर्मी से सभी लोग परेशान हैं। श्रोता, इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से कैसे बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार से रखें। श्रोताओं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्ते
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक यानी लू लगा है तो वो कैसे पता चलता है, यानी इसके क्या लक्षण होते हैं?
1: अगर हीट स्ट्रोक लग गया हो किसी भी आदमी को तो सबसे पहले तो उनको एक कॉमन लक्षण होता है कि शरीर से पसीना जो है वो उनका नहीं होगा
0: जी,
1: और त्वचा जो है उनका लाल हो जाएगा। तेज बुखार का लक्षण भी हो सकता है उसमें
0: जी,
1: बेचैनी लगेगा, घबराहट हो सकता है
0: जी,
1: कोई कोई पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं, ये सब उनके मुख्य लक्षण हैं
0: जी। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि यदि किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक यानी लू लग जाए तब क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले अगर किसी को हीट स्ट्रोक लग गया है तो उन्हें सबसे पहले छायेदार जगह में उनको लाइए, जहाँ हवा ऊपर हवा हो, फैन के नीचे रख सकते हैं उनको, और ठंडा पानी से स्पंज करना है, पूरे शरीर को पोंछना है, ठंडा पानी हो या आप उनको बर्फ जो होता है बर्फ के पानी, बर्फ को पोटली बना के उसे धीरे धीरे धीरे धीरे पूरे स्किन को पोंछेंगे
0: जी।
1: साथ ही साथ अगर वो कंसस्ट हैं तो उनको ORS वगैरह नींबू पानी वगैरह पिलाएं
0: जी,
1: इससे उनको थोड़ा सा तुरंत आराम मिलेगा
0: जी। जी डॉक्टर, डॉक्टर आजकल बहुत तेज गर्मी पड़ रहा है, ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार रखें और ऐसा क्या खाएं पिए कि स्वास्थ्य भी ठीक रहे और गर्मी से थोड़ा राहत भी महसूस हो?
1: इसमें सबसे मुख्य चीज है कि जब भी हम अगर प्रयास करें कि धूप में ना निकलें, अगर इमरजेंसी है, अगर कुछ काम करने जाना ही है तो सबसे पहले हम अपने शरीर को ढक के जाए, और शरीर ढकना हल्के कपड़ों से ढकना है, सूती कपड़ा हो जब बहुत बढ़िया, डार्क कपड़ा ना पहने, हल्का पहने कपड़ा, ठीक है, और पानी पी कर जाए सबसे पहले, जब भी घर से निकले तो पानी थोड़ा सा कैरी करें
0: जी,
1: प्रयास करें कुछ अगर ORS वगैरह का लिक्विड है तो उसको अगर घोल के साथ में लेके चले तो बहुत अच्छा, उसको थोड़ी थोड़ी देर पे उसका प्रयोग करें
0: जी।
1: साथ ही साथ खाने पीने का ध्यान रखें, खाने पीने में वायली चीज, स्पाइसी चीज इसको अवॉइड करें, फ्रूट्स वगैरह का ज्यादा सेवन करें, जैसे सलाद और सूप ये सब खाएं,
0: यानी मौसमी फल,
1: मौसमी फल जो होता है जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया,
0: लीची,
1: प्याज का सेवन इसमें मुख्यतः करना चाहिए लोगों को, इससे क्या है सनस्ट्रोक से बचने में प्याज हमारा बहुत अच्छा काम करता है
0: जी। सर, अभी भी इतना गर्मी है, कामकाज के सिलसिले में लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को जो कामकाज के सिलसिले में धूप में बाहर निकलते हैं तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो वही सुरक्षा, अपना शरीर को जरूर ढक के जाएं, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, और डायरेक्ट सनस्ट्रोक से बचने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाना है, पूरा कवर करके जाएं
0: जी।
1: इसमें अभी जो सनस्ट्रोक हो रहा है इसमें दो लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे जो 60 साल से उम्र से ऊपर के लोग हैं, जैसे बूढ़े लोग जो होते हैं
0: जी,
1: या जो बीमार लोग हैं, जैसे कि किन्हीं को हार्ट का प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, फेफड़े का रोग है
0: जी,
1: किडनी का अगर कोई समस्या है
0: जी,
1: तो इन लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए, साथ साथ बच्चों को, छोटे बच्चों को भी इससे बचाना है
0: जी,
1: ये मुख्य बचाने के लिए है। लोग ज्यादा सनस्ट्रोक को सह नहीं पाएंगे, जो इंस्टेंट सनस्ट्रोक लग सकता है
0: जी। डॉक्टर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से कैसे बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार रखें, इस विषय पर आपने बहुत ही अच्छे से और विस्तार से पूरी जानकारी दी। आशा करते हैं हमारे श्रोता भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर लाभ अवश्य लेंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से कैसे बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार रखें, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ओम प्रकाश, और इनसे बातचीत कर रही थी कृष्णा कावेरी।

बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि घरों में रसोई में एलपीजी और पीएनजी गैस की सुविधा के साथ साथ सावधानी और सुरक्षा भी जरूरी है। बहनों, एलपीजी और पीएनजी गैस कनेक्शन के साथ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। गैस चूल्हा को इस्तेमाल करते समय सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो जोखिम का खतरा बढ़ सकता है। बहनों, अगर आपको गैस के सिलेंडर में किसी भी प्रकार का दरार या नॉब में ढीलापन दिखाई दे या हल्का सा भी गैस लीक की शिकायत हो तो गैस सिलेंडर को तुरंत बदलवा दें। सुरक्षा के लिए पीएनजी के इस्तेमाल से खाना बनाते समय किचन में उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था जरूर रखें। एलपीजी या पीएनजी का उपयोग करने के बाद उपकरण वाल्व को हमेशा बंद करें। बहनों, छोटी छोटी सावधानियां बड़े बड़े जोखिम को टाल सकती है।

बहनु कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहनों, क्या आप जानती हैं कि दूध से बनी पनीर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी है। बहनों, पनीर में काफ़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद होता है। जो बहनें शाकाहारी हैं उनके लिए पनीर का सेवन दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की ज़रूरत होती है और पनीर कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम और फास्फोरस गर्भवती महिलाओं के साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए भी लाभदायक होता है। पनीर में मौजूद खनिज जैसे विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक हमारे शरीर की हड्डियों के लिए काफ़ी गुणकारी है, लाभकारी है। बहनों, पनीर का सेवन हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचा सकता है, जैसे दिल का दौरा, कब्ज, मानसिक विकार, माइग्रेन और कोलेजन आदि की बीमारियों से बचने में पनीर का सेवन लाभकारी है।

भागदौड़ भरी भरी जिंदगी में फिट, खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है और साथ ही खुश रहना भी आवश्यक है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। बहनों, दिन की शुरुआत में एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर जरूर पिए। इससे शरीर तरोताजा महसूस होता है। सुबह सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं। जंक फूड, फास्ट फूड ना खाएं। घर में बना खाना खाएं जो सेहत के लिए जरूरी है। बहनों, 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद अवश्य लें और स्ट्रेस यानी तनाव को खुद पर हावी न

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

बहनों, इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय अब संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापनों और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का दिया निर्देश। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं पंचायतों को सशक्त बनाने पर भी दिया जोर। झारखंड मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े 39 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस को जारी रखने की दी मंजूरी। 25,530 करोड़ रुपए का किया आवंटन। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता होने की दी जानकारी। घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण या खरीदारी न करने की दी सलाह। और राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और पंचायतों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों और सखी मंडलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने SHG महिलाओं को बाजार, प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज उपलब्ध कराने तथा पलाश मार्ट जैसे बिक्री केंद्रों के विस्तार की कार्य योजना का भी निर्देश दिया। बैठक में मनरेगा, वर्षा हरित ग्राम योजना, लिफ्ट इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट और ग्रामीण आजीविका से जुड़े विभिन्न योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग समेत कई विभागों के 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य की कैबिनेट सचिव वंदा दादेल ने बैठक की विस्तृत जानकारी दी।
1: आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, NDPS एक्ट 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार नीति का गठन।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा है कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज मधुवन में गिरिडीह ग्रामीण और कोडरमा जिले के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय हित के मामले में विरोध नहीं करना चाहिए।
2: इलेक्शन कमीशन SIR तो प्रत्येक आजाद भारत में कई बार हो चुका है। अभी जो हो रहा है तो इसलिए लोगों को कष्ट हो रहा है क्योंकि बीजेपी के राज में हो रहा है, मोदी जी के राज में। अभी जो SIR हो रहा है कि भाई देश के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई वही मतदाता सूची में उन्हीं का नाम रहेगा जो इस देश के लोग, कोई अगर बाहरी लोगों ने घुसपैठ आकर किया, घुसपैठ किया और इलीगल तरीके से उन्होंने वोटर लिस्ट में अपने नाम चढ़ाया है तो उसको हटाया जाएगा।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर से 1 डॉक्टर और पुणे से 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। CBI के प्रवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक 49 स्थानों पर छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों IOCL

0: पीसीएल और एचपीसीएल ने झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता होने की जानकारी दी है। कंपनियों ने कहा कि राज्य के सभी पेट्रोल पंपों, डिपो, बॉटलिंग प्लांट और एलपीजी वितरक केंद्रों पर ईंधन आपूर्ति सामान्य और निर्बाध रूप से जारी है। तेल कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण या खरीदारी न करें। गुमला जिला के कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जिले के निवासी लाभान्वित हो रहे हैं।
1: धरती आबा जनजातीय योजना अभियान के तहत हमारे जिले में 5 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 विद्यालयों में 6 SER मतलब 6 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण और दोनों विद्यालयों में एक एक 50 बेड का छात्रावास निर्माण का योजना स्वीकृत है। उसके अतिरिक्त ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर गुमला का जो नया समाहरणालय है वहाँ पर ढलाई तक का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
0: खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र में आयोजित छऊ नृत्य मेला के दौरान हुई डबल मर्डर मामले का पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डॉग स्क्वाड और FSL की मदद से पुलिस ने सबूत जुटाते हुए आरोपियों को साइको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।
2: लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया और लगातार हम लोग टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। उसमें हम लोगों को कल एक ब्रेक थ्रू हासिल लगा कि एक व्यक्ति जिसने कि ये घटना को अंजाम दिया था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया और 2 लोग और थे जिनका की रोल था कि इन्होंने वो लाशें जो थी उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया था, उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अब हम लोग उनको न्यायिक अवरक्षा में भेज रहे हैं।
0: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग ने 2 जून तक राज्य में मौसम के अस्थिर बने रहने और कई जिलों में गर्जन, वज्रपात तथा तेज हवा चलने की आशंका जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का दिया निर्देश। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं पंचायतों को सशक्त बनाने पर दिया जोर। झारखंड मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े 39 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार ने सार्थक PDS को जारी रखने की दी मंजूरी। 25,530 करोड़ रुपए का किया आवंटन। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता होने की दी जानकारी। ईंधन के अनावश्यक भंडारण या खरीदारी न करने की दी सलाह। और राजधानी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में कल बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी जिले में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो, इसी लेकर पुलिस प्रशासन ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में जिले की पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त ने बताया।
2: जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक बकरीद पर्व के मद्देनजर उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में रखी थी। उनके द्वारा जो भी समस्याएं थी उनसे की जैसे लोड शेडिंग को लेकर के हो या फिर थोड़ा सड़क की सफाई उफाई को लेकर बकरीद के दिन पे हो उसको रखा गया, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं।
3: शांति समिति के जितने मेंबर्स थे उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आगामी जो बकरीद का पर्व है उसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। जितने भी आपके बकरीद के पर्व होते हैं, जो कुर्बानियों के जो सारे अरकान होते हैं उसको आप अपने घरों के अंदर करें, उनसे जो भी सॉलिड वेस्ट वगैरह जनरेट होता है वो आप प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, उसको इधर उधर ना फेंकें। लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि जो भी ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन अगर कहीं सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से फैलते हैं आप उसको इमीडिएटली प्रशासन को बताएं।
1: खूंटी जिले में 25वें उप विकास आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार प्रकाश ने विधिवत पदभार संभाला। उन्होंने ग्रासरूट स्तर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही।
4: उप विकास आयुक्त के रूप में भी जो दायित्व मिला उसमें पहले मैं रह चुका हूँ, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में रहा हूँ। उसके पहले मैं विकास शाखा में मैं विकास की जितनी योजनाएं उसका भी मैं कार्यभार पहले रह चुका हूँ। कोशिश करूंगा कि उन्हें जो अनुभव है मेरे जितने भी उस समय अपने प्रशासनिक जीवन के उनको मैं इसमें कोशिश करके अपने इस प्रस्थापन के दौरान इस्तेमाल करता हूँ।
1: इधर आईटीडीए निदेशक आलोक शिकारी कच्छप ने धरती आभा ग्राम उत्कर्ष अभियान द्वारा संचालित विकासोन्मुख कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की रिपोर्ट साझा की।
5: जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम विगत दिनों में चलाया गया, जनजातीय ग्रामीण उत्सव जन भागीदारी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत 18 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन का कार्यक्रम चलाया गया और 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये जो है जिले के 403 गांवों में जहां हम लोग आदि सेवा केंद्र स्थापित किए हैं और तथा विभिन्न पंचायतों में एक सिचुएशन कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप से जो है यहाँ के सभी मैक्सिमम आदिवासी जनजातीय लाभान्वित हुए।
1: खूंटी पुलिस लगातार आपराधिक और उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाकर गुम हो चुके मोबाइल को तकनीकी शाखा की मदद से मोबाइल चोरों तक पहुंचकर मोबाइल बरामद किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया।
6: मिशन मुस्कान के तहत हम लोगों ने ये पहल स्टार्ट की है कि जो भी लोगों का मोबाइल खूंटी जिला अंतर्गत गुम हो जाता है या कभी चोरी हो जाता है तो हम लोग तुरंत उसको जो है CIR पोर्टल है उस पर अपडेट करा देते हैं और जैसे ही हम लोगों को उस फोन का लोकेशन प्राप्त होता है हम लोग तुरंत उसमें टीम भेज करके उस फोन को रिकवर कराते हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने पहली बार 56 मोबाइल उनके ओरिजिनल धारकों को रिटर्न कराए हैं।
1: इधर इस हफ्ते खूंटी के बिरसा कॉलेज में टाटा स्टील फाउंडेशन ने CSR के तहत विद्यार्थियों के पठन पाठन हेतु 60 लाख का डेस्क बेंच उपलब्ध कराया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है बंगला कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर।
1: आरोग्यम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुनिए आज रात 8 बजे आपके साथ होंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम जिज्ञासा।

कार्यक्रम जिज्ञासा के सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी श्रोता दोस्तों का। दोस्तों, जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसके टर्म्स और कंडीशंस के साथ साथ प्राइवेसी पॉलिसी को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जानना जरूरी होता है कि जो भी ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपका डेटा

0: कैसे रिस्टोर करता है और उसका इस्तेमाल किस तरह करेगा। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसके बारे में जानने का अच्छा तरीका होता है कस्टमर्स रिव्यू जानना। अगर कोई खतरे की बात जान पड़े तो उससे दूरी बनाने में ही भलाई है। सेफ होता है कि आप गूगल और प्ले स्टोर पर अधिकृत तौर पर मान्यता प्राप्त ऐप्स को ही डाउनलोड करें। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि ऐप्स हमें वर्ल्ड क्लास सर्विसेज फ्री में देते हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। ऐप्स हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, उसे मोनिटाइज करते हैं। ये ऐप्स हमसे ही परमिशन लेकर हमारा डेटा स्टोर करते हैं, इसलिए इन्हें परमिशन देते समय सावधानी रखनी चाहिए। उतनी ही परमिशन दें जिससे आपका काम हो जाए, क्योंकि एक बार अगर आपका डेटा स्टोर हो जाता है तो एक आपका प्रोफाइल बन जाता है। आपको किन चीजों का शौक है, आपके खान पान, पहनावा, सब कुछ को समझ लिया जाता है। कंपनियां उस डेटा को शेयर करने के साथ अन्य कंपनियों को डेटा बेचती है, जिसके आधार पर विज्ञापन और मार्केटिंग कंपनियां बिजनेस करती हैं, उनके कारोबार की सटीकता में बढ़ोतरी होती है। ये डेटा इकोनॉमी का दौर है जहां डेटा ही करेंसी है। अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो अगला टारगेट आप भी किए जा सकते हैं। विशेषज्ञ उदाहरण देते हैं कि आपका फोन आपकी सारी बातें सुनता है, क्योंकि अगर आप फोन के सामने बात करें कि हमें मुंबई जाना है तो आपको मुंबई संबंधी ऑफर्स आने लग जाएंगे। ये कस्टमाइज्ड डेटा एडवर्टाइजिंग है जिसमें डेटा ही रॉ मटेरियल है। इसमें कंपनियां इच्छुक होती है जिसके बदले आपको कस्टमाइज्ड सर्विस दी जाती है और उसके बदले आपका डेटा लिया जाता है। ऐसे में आप ही उनके प्रोडक्ट बन जाते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो एप्स आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से डेटा लेते हैं। इनमें से प्रमुख होते हैं आपकी लोकेशन, कॉन्टेक्ट लिस्ट, कैमरा, कॉल लॉक्स, फोटोज, हेल्थ डेटा, मैसेज, माइक्रोफोन वगैरह। डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा की जानकारी और शेयरिंग के आधार पर ग्राहक ही प्रोडक्ट बन गया है, इसलिए डेटा शेयर करना कंपनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कमर्शियल तौर पर लाभकारी होता है। तो आप ऐसे में कैसे पता लगाएं कि आपका डेटा चोरी हो रहा है या नहीं, इसका आकलन आपको खुद करना होगा। इसके लिए आप ऐप की परमिशन में जाएं और खुद से पूछिए कि इसे डाउनलोड करने के पीछे क्या उद्देश्य है। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आप ऐप की परमिशन को रिव्यू करें और पूछिए कि क्या आप इस ऐप को परमिशन उसके मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। अगर हाँ तो उस परमिशन को बरकरार रखिए, अदरवाइज उसे हटा दीजिए। विशेषज्ञों के अनुसार डेटा को सुरक्षित करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे कि साइबर सुरक्षा को जीवन शैली के रूप में अपनाएं। ये मत सोचिए कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार या कंपनियों की है। अपने डेटा को शेयर करने से पहले कंजूसी बरतें, डेटा को जरूरत के हिसाब से ही शेयर करें। अपने डेटा का बैकअप लेकर रखें। बैकअप होने से डेटा के उड़ने के बाद भी उसे रीस्टोर किया जा सकता है। साथ ही एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम भी डालकर रखें। एक अच्छा फायरवॉल रखें जो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। फायरवॉल आपकी डिवाइस पर होने वाले हमलों को रोकता है जो 24/7 सक्रिय रहता है। यानी कि दोस्तों एक ग्राहक के तौर पर हमें सदैव सतर्क और सचेत रहना चाहिए, और अगर आपको अपनी साइबर सुरक्षा को सशक्त करना है तो सावधानी बरतना जरूरी है। दोस्तों बात सावधानी की हो रही है तो आइए जाने कि सुरक्षित कंप्यूटिंग के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों कंप्यूटर तभी हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है जब हम इसका इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करें। सुरक्षित कंप्यूटिंग के कुछ उपाय हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अंकेश कुमार शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: इस आधुनिक युग में सारी दुनिया इंटरनेट से आपस में जुड़ी हुई है। ऐसे में अपने कंप्यूटर सिक्योरिटी को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज हमें अगर किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है तो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, जिसके माध्यम से हमारे कंप्यूटर पर साइबर अटैक होने का खतरा बना रहता है, जिसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने की जरूरत है। वर्तमान समय में साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ कंप्यूटर सिक्योरिटी भी काफी जरूरी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी बढ़ चुका है और यूजर अपना पर्सनल डेटा कई तरह के डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे तक शेयर करते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह सुरक्षित है। सबसे पहले ये सवाल आता है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को कैसे मजबूत किया जाए ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक शाखा है जिसे खासकर कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इससे कंप्यूटर सिस्टम तथा डेटा जिसे ये स्टोर या एक्सेस करते हैं की सुरक्षा होती है। इसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रूप में जानी जाती है जो कंप्यूटर्स पर लागू होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव में

0: शामिल है इन्फॉर्मेशन का चोरी होने से प्रोटेक्ट करना। कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हर प्रकार के कार्य करने में सहायता करता है। इसलिए हम अपने सिस्टम को पर्सनल और सिक्योर रखना चाहते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर इसका गलत इस्तेमाल न कर सके और कोई वायरस भी सिस्टम को क्षति न पहुंचा सके। कंप्यूटर सिक्योरिटी में सुधार लाने के लिए इन उपायों का आजमाना जरूरी है। शारीरिक रूप से कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकना और उनको क्षति पहुंचाने से रोकना। हार्डवेयर डिवाइसेस स्थापित करना जो अनऑथराइज्ड कंप्यूटर के प्रोग्राम पर कंट्रोल कर सके और बचाए आश्रित होने से कंप्यूटर प्रोग्राम से जो कंप्यूटर सिक्योरिटी से खेलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का सशक्त करना जो कि कंप्यूटर को आश्रित होने से बचाए उन कंप्यूटर प्रोग्राम से जो कंप्यूटर सिक्योरिटी से खेलते हैं या उनमें भेद करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भरोसेमंद बनाती है और उसे डिस्ट्रक्टिव होने से रोकती है। साइबर हमला के स्रोत इस प्रकार हैं। कंप्यूटर पर मुख्य रूप से हमला करने में वायरस प्रोग्राम कारगर है। कंप्यूटर वायरस एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है तथा कंप्यूटर ऑपरेशंस में भी इंटरफेयर करने की क्षमता रखता है। साइबर अटैक के हमला के स्रोत इस प्रकार हैं। पहला, डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स। डाउनलोडेबल फाइल्स वायरस का सबसे प्रमुख तथा संभव स्रोत है। किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे गेम्स, स्क्रीन सेवर इत्यादि इसके प्रमुख सोर्स हैं। यदि आप किसी प्रोग्राम को इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करने से पहले प्रत्येक प्रोग्राम को स्कैन करना आवश्यक है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर वायरस अटैक्स के अन्य स्रोत हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वायरस तथा बग्स के होने की संभावना अत्यधिक होती है, जिन्हें ढूंढकर सिस्टम से दूर करना बेहद कठिन है। इसलिए इंटरनेट से सूचना को किसी भी रिलायबल सोर्स से ही डाउनलोड करना चाहिए। ईमेल अटैचमेंट्स। ये अटैचमेंट वायरस के मुख्य स्रोत हैं। इन ईमेल अटैचमेंट्स को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इंटरनेट। सभी कंप्यूटर के यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम्स पर वायरस अटैक से अनअवेयर होते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध क्लिक या डाउनलोड इत्यादि तत्व ही वायरस के फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी। जब भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा होता है, उस समय कंप्यूटर में पड़ी सीडी को निकाल लेना ही ठीक माना जाता है। यदि हम कंप्यूटर से सीडी नहीं निकालते हैं तो यह स्वतः ही डिस्क में बूट होने लगती है, जिससे वायरस अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए चार तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ये एक ऐसी सिस्टम है जो किसी कंप्यूटर में डेटा का उपयोग या उसमें परिवर्तन करने की अनुमति देता है। आमतौर पर एक यूजर किसी कंप्यूटर में लॉगिन करता है, जिसके पश्चात एक्सेस कंट्रोल तय करता है कि उस यूजर के लिए कौन सा डेटा पहुंच में होना चाहिए और कौन सा नहीं। दूसरा, डेटा एक्सेस कंट्रोल। कौन सा डेटा कौन नियंत्रित कर सकता है, इस बात की निगरानी इस कंट्रोल के तहत की जाती है। सिस्टम किसी भी व्यक्ति विशेष फाइलों तथा अन्य किसी भी ऑब्जेक्ट्स की सुरक्षा के स्तरों पर आधारित होकर ही एक्सेस रूल्स को बनाता है। तीसरा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत ऑफलाइन प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है, जिससे कोई भी सिस्टम या तो सुरक्षित बनाया जाता है या फिर उसकी सुरक्षा को तोड़ा जाता है। चौथा, सिस्टम डिजाइन। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की बेसिक प्रोटेक्शन की विशेषताओं से लाभ लेती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी कई प्रकार के कोर सेक्टर से संबंधित होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी भी इंफॉर्मेशन डेटा के अन्य इल्लीगल पर्सन द्वारा एक्सेस न होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। नॉन रेप्यूडिएशन। मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल पर्सन कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से इग्नोर न कर दे, इस प्रकार की सुनिश्चितता को नॉन रेप्यूडिएशन कहते हैं। ऑथेंटिकेशन। यह कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लीगल अथवा इल्लीगल होने को सुनिश्चित करता है। एक्सेस कंट्रोल। जिस यूजर को जिन रिसोर्सेज का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हो, वह केवल उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे, इस बात की सुनिश्चितता को एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। अवेलेबिलिटी। सभी सिस्टम्स के कार्य करने के प्रोसेस का सही होना व किसी भी लीगल यूजर को सेवाएं देने से मना करना इस अवेलेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टोग्राफी। किसी सूचना को छिपाकर या सीक्रेट तरीके से लिखने की तकनीक को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के दौरान डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। क्रिप्टोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले तत्व इस प्रकार हैं। प्लेन टेक्स्ट। यह इनपुट के रूप में दिया जाने वाला ओरिजिनल मैसेज होता है। सिफर। यह बिट बाय बिट या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, जिसमें संदेश का अर्थ नहीं बदलता। सिफर टेक्स्ट। यह कोडेड मैसेज या एनक्रिप्टेड डेटा होता है, जिसे यूजर सीधे नहीं पढ़ सकता। इनक्रिप्शन, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहते हैं। इसके तहत एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का प्रयोग होता है। डिक्रिप्शन, यह इनक्रिप्शन प्रोसेस का रिवर्स होता है, अर्थात इसमें साइबर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। स्टेनोग्राफी, मैसेज को उसके ओरिजिनल रूप को छुपाने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। यह डेटा प्राइवेसी एंड इंटीग्रेशन में मदद करता है। इंटेग्रिटी, यह सुनिश्चित करता है कि इंफॉर्मेशन को किसी इलीगल यूजर द्वारा इस प्रकार बदला तो नहीं गया है कि उसे लीगल यूजर भी न पहचान सके। इंटीग्रेशन कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के कुछ सुझाव, जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिससे आप अपने कंप्यूटर को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, वे इस प्रकार हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप को आप हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें, जैसे कि ठंडे स्थान पर। यदि आप अपने कंप्यूटर को ठंडे स्थान पर रखते हैं तो कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रोसेसर ठंडा रहता है और कंप्यूटर ज्यादा समय तक चलता रहता है। कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग न होने पर आप कंप्यूटर को किसी कपड़े से ढक कर रखें, जिससे आपके कंप्यूटर लैपटॉप में धूल मिट्टी ना जाए। यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो कंप्यूटर या लैपटॉप को स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। आप कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग उसी व्यक्ति को करने दें जिसे कंप्यूटर या लैपटॉप की जानकारी हो, या फिर उसने कंप्यूटर से संबंधित अध्ययन किया हो। कंप्यूटर या लैपटॉप में आप हमेशा उपयोगी सॉफ्टवेयर का यूज करें। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से अनावश्यक सॉफ्टवेयर को रिमूव करें। यदि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप कोई उपयोग करता है तो आप अपने कंप्यूटर में उसके लिए एक यूजर अकाउंट क्रिएट करें। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सभी सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। आप अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में कभी भी किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर करके ना रखें। इस प्रकार वर्तमान आईटी एंड कंप्यूटर एज में सेफ कंप्यूटिंग टिप्स भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
1: सुरक्षित कंप्यूटिंग के उपाय, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अंकेश कुमार शर्मा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज महीने का आखिरी बुधवार है, रात के 8 बजने वाले हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, महीने के हर आखिरी बुधवार को रात 8 बजे हम लेकर आते हैं स्वास्थ्य संबंधी लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसमें हमारे श्रोता अपनी समस्याओं से संबंधित सवाल अतिथि डॉक्टर से सीधा पूछकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि हैं डॉक्टर कुमार अभिषेक, जो कि एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। आप अपनी समस्याओं से संबंधित या बीमारी से संबंधित सवाल सीधा उनसे पूछकर निदान पा सकते हैं। तो अभी फोन उठाइए और सवाल पूछिए। सवाल पूछने के लिए हमारा नंबर नोट करें, नंबर है 06572960445। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 06572960445।

0: हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर से पूछिए अपनी बीमारी, तकलीफ और समस्याओं के बारे में। पाइए सही सलाह, जानिए सही इलाज और उचित समाधान। हेलो डॉक्टर, आपका स्वास्थ्य आपकी सेहत को समर्पित आकाशवाणी जमशेदपुर का मासिक कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर्स।
0: तो बस अभी अभी फोन कीजिए, हमारा नंबर है 06572960445। हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर्स।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आरोग्यम केयर हॉस्पिटल दयाल सेंटर शेरे पंजाब चौक आदित्यपुर।
1: खुशखबरी, आरोग्यम केयर हॉस्पिटल लाया है बेहतर स्वास्थ्य का तोहफा,
2: जहां हर महीने की 1 और 16 तारीख को है फ्री ओपीडी सेवाएं।
1: पाएं अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी बीमारियों में मुफ्त परामर्श।
2: आए आरोग्यम केयर हॉस्पिटल एट दयाल सेंटर शेरे पंजाब चौक आदित्यपुर। आपकी मुस्कान हमारी पहचान।
3: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर का प्राइमरी चैनल FM 102.4 MHz और मैं हूं तासीर शाहिद। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। श्रोताओं, हमारे शरीर की पूरी मजबूती और संतुलन हमारी हड्डियों और जोड़ों पर टिका होता है। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, काम करना, जीवन की हर गतिविधि में स्वस्थ हड्डियाँ बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन आज की बदलती जीवन शैली, गलत खान पान, कैल्शियम की कमी, व्यायाम की कमी और बढ़ती उम्र के कारण जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, फ्रैक्चर, गठिया और हड्डियों से जुड़ी कई समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं जरूरी विषयों पर चर्चा करने और आपके सवालों का समाधान देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने और अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक। आज आप सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं हड्डियों, जोड़ों के दर्द, फ्रैक्चर, कैल्शियम की कमी और इलाज से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं और उसी समय विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए गर्म जोशी के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार अभिषेक का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
4: धन्यवाद।
3: श्रोताओं, हमारा फोन नंबर है 0657-2960-445। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और जुड़ जाइए आपके अपने जीवंत यानी लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से। हम आपके फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब तक हमारे श्रोता फोन कॉल के जरिए हमसे जुड़ते हैं तब तक हम कुछ बातें करते हैं और शुरुआत करते हैं कि बदलती जीवन शैली के कारण हड्डियों में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं।
4: देखिए, आजकल की जो जीवन शैली हमारी हो गई है वो काफी सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, हम कहें कि ज्यादा काम हम बैठ के करते हैं। हमारे लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज की कमी आ गई है, अच्छी खान पान की कमी आ गई है, जिसकी वजह से बेसिकली हमारे जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, विटामिन D3 डिफिशियंसी, उसके बाद सर्वाइकल पेन, ये सारी समस्याएं हम ज़्यादा रेगुलरली देख रहे हैं और वो भी कम उम्र में देख रहे हैं
3: जी।
4: हमारे पेशेंट का जो एज ब्रैकेट है वो घटता जा रहा है
3: जी। तो शुरुआत करते हैं कि जोड़ों के दर्द से, ये आजकल बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों है?
4: इसका मुख्य कारण है हमारा जोड़ों का जो कार्टिलेज है, जोड़ों में हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, तो कार्टिलेज हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय होने का कारण मेन है कि हमारा खान पान सही नहीं है और हम रेगुलर एक्सरसाइज अपनी लाइफ स्टाइल में नहीं ऐड कर पा रहे हैं।

0: जिसकी वजह से जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं, और वो बहुत कम उम्र में उसकी जो वियर एंड टीयर है वो बहुत जल्दी आ जा रही है।
1: जी
0: दूसरा ओबेसिटी हमारा एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता जा रहा है।
1: बढ़ता वजन यानी ओबेसिटी का मतलब
0: बढ़ता वजन, बिल्कुल।
1: तो इसके बारे में आप और क्या बताना चाहेंगे?
0: मैं अपने हर मरीज को कहना चाहूँगा कि आप ट्रीटमेंट से बेटर है कि आप उसके प्रिवेंशन की तरफ देखें, अपने लाइफस्टाइल में वो बदलाव करें जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करे ना करे।
1: जी,
0: अगर डेवलप ना करेगा आप उसकी स्क्रीनिंग पहले कर पाएंगे, अर्ली स्टेजेस में विटामिन D3 डिफिशियंसी में नहीं जाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस।
1: और हमारे पास हमारे पहले श्रोता हैं। हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर,
0: हेलो
1: हेलो डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपकी उम्र क्या है?
2: और बैक पे डॉक्टर साहब मेरा बैन बहुत रहा है, रेमेडी कैसे मिल सकता है, क्या करना होगा?
0: सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आवाज थोड़ी कट रही थी।
1: अपना सवाल आप फिर से पूछ लीजिए।
2: हम बोल रहे थे कि एक दो महीना से ही मेरा बैक पेन बहुत हो रहा है, जो कमर का निचला हिस्सा होता है ना वहाँ पे पेन बहुत हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा?
0: सर हम आपको एक सलाह देंगे कि किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप एक बार मिल करके अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं। आपकी जो कमर दर्द है वो सिर्फ मांसपेशियों की वजह से है, हड्डियों की वजह से है, या हड्डियां, नस और मांसपेशियां तीनों इसमें इन्वॉल्व है?
2: अच्छा,
0: निदान की बात उस एग्जामिनेशन के आधार पर हम लोग बता सकते हैं।
1: जी, हमें उम्मीद है आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब हम बातचीत को आगे जारी रखते हैं। आपने कहा विटामिन D3 डेफिशिएंसी अभी बहुत महिलाओं में देखी जा रही है, इसका कारण क्या है?
0: मैम मेजर कारण जो हमें आजकल इनकाउंटर होता है वो है कि पहले हम लोगों का जो सन एक्सपोजर था अर्ली मॉर्निंग, पहली बात है कि हमारा अर्ली मॉर्निंग उठने का समय चेंज हो गया है,
1: जी,
0: जो सर्कैडियन रिदम,
1: बड़ी समस्या है,
0: सर्कैडियन रिदम क्लॉक जो हमारा है वो बदल चुका है। पहले हम लोग 5-6 बजे उठ करके अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और हम एक्सरसाइज करते थे ओपन स्पेस में। आजकल अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्लोज जिम में करते हैं, जहाँ की हमें सूर्य के प्रकाश से कोई संपर्क नहीं,
1: सूरज की रोशनी
0: नहीं मिल पाती है, जो कि एक मेजर कारण है कि हमें विटामिन D3 डिफिशियंसी होती है।
1: जी,
0: और दूसरा है खान पान।
1: जी, तो इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं महिलाओं में?
0: मांसपेशियों में दर्द रह रहा है, कमर दर्द रह रहा है, अर्ली एजेस में उनके डिजेनरेशन, हड्डियों की डिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज डेवलप कर रही है।
1: तो ये सिर्फ महिलाओं में ही देखने को मिल रही है या बच्चों में है या पुरुषों में भी है?
0: पुरुषों में भी है मैम, बट यूजुअली महिलाओं में रेशियो ज्यादा है।
1: जी, क्योंकि वो अक्सर घर में ज्यादा रहते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी, इसी कारण। और कैल्शियम की कमी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
0: जोड़ों में दर्द, अर्ली एज में फ्रैक्चर,
1: जी,
0: कम चोट लगने पर भी आपको ज्यादा दर्द रहना,
1: जी,
0: अपने आप से हड्डियों में एक दर्द पैदा हो जाना, ये सारी चीजें हैं, कमर में दर्द रहना।
1: जी, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है?
0: प्रॉपर डोज में आप या तो अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर डोज में कैल्शियम डाइट ले, कैल्शियम की मेडिसिन ले, या फिर प्रॉपर डाइट अपना किसी डाइटिशियन से बात करके डाइट प्लान चेंज करें।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल महिलाओं में, यहाँ हमारे पास हमसे एक श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो डॉक्टर,
3: हेलो,
1: हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं, आपकी उम्र क्या है?
3: मेरा नाम कविता है और मैं बिस्टुपुर से बोल रही हूँ।
1: जी,
3: मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो उसका एक जेनेटिक रीजन होता है और क्या वजह है जिसके कारण होता है, और हमको ये जानना है कि अर्ली स्टेज में कैसे पता करें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है और उसका क्या इलाज संभव है पूरी तरह से?
0: मैम रूमेटॉइड आर्थराइटिस फुल्ली ट्रीटेबल डिजीज है और इसका सबसे मुख्य कारण जो आपने जैसे बोला जेनेटिक होता है, और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स उसको हम लोग बोलते हैं। और रही बात हमारी कि आप उसको कैसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, तो वो किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से या रूमेटोलॉजिस्ट से मिल करके आप उसको प्रॉपरली एग्जामिनेशन कर

0: है?
1: तो कैसे, ये कैसे समझ में आएगा कि अब जरूरत है जाने की इसके टेस्ट के लिए या फिर डॉक्टर से मिलने की?
0: मैम जब आप सुबह में
1: होगा क्या?
0: आप जब सुबह में उठती हैं, अगर आपके जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा रहे और आपको बहुत ज्यादा स्टिफनेस लग रही है, स्पेशली आपके स्मॉल ज्वाइंट्स में, तो आप अर्ली एज पॉसिबल आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ही क्लियर कट क्राइटेरिया है कि आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस की तरफ आप जा रही हैं पेन के साथ जी।
1: पर इसके जो इसके लिए इलाज में जो डॉक्टर, मेरी मदर को है
0: जी,
1: तो डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं जो कुछ समय बाद बंद करना पड़ता है, फिर पेन होता है बहुत ज्यादा और फिर 2-3 महीने बाद फिर से शुरू करते हैं, क्या केवल यही ट्रीटमेंट है?
0: नहीं मैम, यही सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है और स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट नहीं है, स्टेरॉइड्स बस एक एक्यूट फ्लेयर अप को घटाने का इलाज है
1: जी।
0: हम ये कहें कि रिमेटॉयड आर्थराइटिस का इलाज स्टेरॉइड है, ये नहीं है।
1: तो इसके और भी इलाज हैं और ये पूरी तरह ठीक हो सकता है?
0: जी मैम, हो सकता है।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
2: जी हमें आशा है आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, हम बातें कर रहे थे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की। आजकल ये देखा जा रहा है फ्रोजन शोल्डर, इसकी काफ़ी समस्या हो रही है, इसका कारण क्या है?
0: मैम मुख्यतः अगर इसका कारण करें तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा इसमें मेजर रोल लेता है
2: जी,
0: और दूसरा है हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल। अगेन जहां हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं वहां जोड़ों में, अगर हम इसके मेडिकल टर्म की बात करें तो वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हम उसको बोलते हैं
2: जी। इसको क्या आप साधारण भाषा में बता?
0: मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ, आपके जोड़ के अंदर एक कैप्सूल होता है
2: जी।
0: आप समझे कि उसमें एक जंग सा लग जाए या एक जाम सा हो जाए
2: जी,
0: तो वहां पे हम मूवमेंट नहीं कर पाए
2: जी,
0: तो वही चीज है फ्रोजन शोल्डर।
2: तो इससे आराम कैसे मिलता है? इसी बीच हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर।
3: हेलो।
2: हेलो डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपकी उम्र क्या है और आपकी क्या समस्या है?
3: मेरा नाम विकास है, मैं चाईबासा से बोल रहा हूँ
2: जी। विकास,
3: दरअसल ये मेरी माता जी के बारे में था, उनके इंडेक्स फिंगर में एक्चुअली क्या नाखून के पास नाखून हल्का फटा हुआ है और उनके नीचे दर्द काफी होता है उनको, और वो जो दर्द है वो नाखून से बढ़ते बढ़ते हाथ के अलग अलग पार्ट्स में भी थोड़ा दर्द होता है उनको।
0: सर आपकी माता जी की जो समस्या है वो फंगल इन्फेक्शन है, वो बेसिकली बोन अच्छा। की प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आप अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो हम लोग उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो पेन सिर्फ फंगल इन्फेक्शन बहुत दिनों से रहने की वजह से बढ़ता चला जा रहा है
3: जी। जी, और सर दरअसल क्या है उनके हाथों में दर्द काफी, कभी कभी कई जगह जैसे ठंडी का मौसम होता है, ऐसे मौसम होता है तो काफी दर्द करने लगता है, रात को सोने में दिक्कत होती है उनको।
0: हो सकता है उनको विटामिन B12, D3 और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो, जो कि हम लोग चेक करने के बाद बता सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा
0: जी, ओल्ड एज में ये बहुत कॉमन है जो होता है
3: जी।
0: जी
3: तो इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप मुझे?
0: इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और अपना टेस्ट कराएं।
3: जी, जी।
0: टेस्ट कराने के बाद ही कोई मेडिसिन ले, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना खाएं क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं
2: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें आशा है कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, हम बातें कर रहे थे, अपनी बातों को जारी रखते हैं। आप हमारा जो बैठने का तरीका है आजकल, वो उससे कैसी परेशानियां हो रही हैं?
0: हमारे बैठने के तरीके से हमें 2 परेशानियां देखने को मिल रही है। एक हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर बोल सकते हैं कि हमें रेगुलरली पेशेंट्स मिल रहे हैं
2: जी।
0: और दूसरा लो बैक पेन
2: जी,
0: जो हमारे फर्स्ट
2: श्रोता से विद्यार्थी हैं जो बहुत लंबे समय तक बैठ रहे हैं
0: जी, बिल्कुल,
2: या घर में बैठकर काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है या डेस्क पर बैठ के काम कर रहे हैं,
0: तो वो बैठने का एक पोस्चर होता है
2: जी।
0: अगर उस पोस्चर को नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो उनके स्पाइन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है
2: जी,
0: और उस लोड की वजह से हम लोग स्पाइन के दर्द इनकाउंटर कर रहे हैं रेगुलरली
2: जी।
0: और दूसरी मिस्टेक हम जो हमारे सारे श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि वो ये समझते हैं कि दर्द हुआ तो कहीं से काउंटर से एक दवा लेके खा लिए
2: जी,
0: मेरा दर्द ठीक हो गया, तो वो अपनी बीमारी को क्रॉनिक बना रहे हैं और कुछ नहीं।
2: इसी बीच हमारे पास हमारे एक श्रोता हैं। हेलो डॉक्टर।
4: हेलो।
2: हेलो डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रही हैं?
4: मैं बिष्टुपुर ओ रोड से बोल रही हूँ, मेरा नाम बबीता पांडे है
2: जी। आपकी क्या समस्या है?
4: दरअसल मेरे घुटने में और जितने भी जॉइंट्स हैं सभी में बहुत ज्यादा पेन होता है, और इस दर्द जितने जॉइंट्स हैं हड्डियों में अक्सर दर्द हुआ करता है, और इस दर्द के वजह से मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती हूँ, और जैसे पानी का ग्लास वगैरह पकड़ने में भी मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, और ये स्टार्टिंग दौर है मेरे साथ, ऐसा मुझे पिछले 2 महीने से फील हो रहा है। तो डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहती हूँ कि ये हड्डियों की समस्या है या ये कोई और समस्या है?
0: मैम, ये आपकी हड्डियों की ही समस्या है, और हड्डियों में भी सिर्फ जोड़ों की समस्या आ रही है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एक बार क्लिनिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। एक तो आपके लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस के बता रहे हैं, जो घुटनों की आप बता रही हैं कि आप चढ़ नहीं पाती हैं सीढ़ियाँ, और दूसरी जो आप बोल रही हैं हाथों में कमजोरी आ रही है, तो कमजोरी आना कहीं ना कहीं उसके साथ नसों की समस्या को भी बताता है, तो उसको बिना एग्जामिन किए हुए बताना थोड़ा मुश्किल होगी मैम।
4: तो डॉक्टर साहब मैं इसे क्या समझूं?
0: मैम मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले किसी डॉक्टर से मिल करके या तो मेरे पास आएं या किसी के भी पास जाएं, आप एक बार दिखाएं, अपना एग्जामिनेशन कराएं और प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचे, क्योंकि अपनी बीमारी को जानना ज़्यादा जरूरी है उसके इलाज से। अगर आप जान नहीं रही हैं तो इलाज करना बहुत मुश्किल है। जी
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब हम अपनी बातों को जारी रखते हैं, गठिया रोग क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या है?
0: मैम, गठिया रोग बेसिकली हमारा यूरिक एसिड जब हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स में जम जाए
2: जी,
0: तो उसको हम लोग गठिया रोग कहते हैं, जिसको गाउटी अर्थराइटिस भी हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं
2: जी। इसी बीच हमारे साथ हमारे एक श्रोता है। हेलो डॉक्टर।
5: हाँ हेलो डॉक्टर, मैं संजीव मेहता बोल रहा हूँ आदित्यपुर से।
2: जी संजीव जी, आपकी परेशानी बताइए, समस्या बताइए।
5: देखिए मैं डायबिटिक हूँ, और मैं जब वॉकिंग करता हूँ तो मेरे पैर में ना
0: जी
5: ये दर्द होता है, और मैं जो भी अभी तो इसे साधारण जूता पहनता हूँ
0: जी जी जी सर,
5: उसमें चलने में परेशानी होती है, और पैर में उंगली के बीच फफोला हो जाता है।
0: सर क्या आपको दर्द एड़ियों में होती है या कहाँ पे?
5: हाँ, हाँ एड़ियों में दर्द होता है सर।
0: जी सर, बेसिकली आपको 2 चीज चेक करना जरूरी है सर। एक तो आपको अपना एक्सरे करा के देखना है कहीं आपकी हड्डियाँ बढ़ तो नहीं रही है। कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि एट सर्टेन एज, इसको हम लोग प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं, हड्डियों की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सिराओं पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और वो दर्द होता है जब भी आप चलें। और दूसरा है कि आपको आपका शुगर लेवल्स भी चेक करना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगर बढ़ा हुआ है। इस दोनों चीज के
5: शुगर लेवल चेक किए हैं वो सही है।
0: हाँ, तो फिर आपको एक एक्सरे कराना चाहिए और आपको किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिक से दिखाना चाहिए। इधर आप मेरे पास आए या किसी के भी पास आप जा सकते हैं सर।
5: जी जी जी
0: जी,
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब हम गठिया पर बातें कर रहे थे।
0: जी मैम, मैम बेसिकली जैसा मैं बता रहा था कि गठिया आपको ज्यादातर छोटे जोड़ों को परेशान करता है
2: जी,
0: जैसे उंगलियों के जोड़ हुई या पैर के अंगूठों के जोड़ हुए
2: जी,
0: तो वहां पर होता है कि यूरिक एसिड्स जाके।
2: इसी बीच हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे हैं।
6: हेलो
2: हेलो डॉक्टर।
6: हेलो डॉक्टर।
2: हेलो डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
6: सुनील कुमार महापुर, जाम पड़ा दिया।
2: जी आपकी क्या समस्या है?
6: हम विकलांग हैं, हाथ पैर नहीं चल रहा है।
2: जी अपनी समस्या एक बार फिर से दोहरा दीजिए।
6: हाथ पैर नहीं चल रहा है।
0: सर हाथ पैर में क्या कमजोरी आ रही है, दर्द हो रहा है, क्यों क्या तकलीफ हो रही है जो वो नहीं चल रहा है?
6: सर मन नहीं है, मगर खून मन बहुत कम हो रहा, मतलब कॉटन सर दिखाया, डॉक्टर सर दिखाया है, दवाई भी दिया है, और ये हाथ भी नहीं चल रहा और पैर भी नहीं, नहीं है।
0: सर जैसा आप खुद बता रहे हैं कि आप बहुत सारे डॉक्टर से दिखा चुके हैं, तो जब तक आप अपनी सारी रिपोर्ट्स नहीं दिखाएंगे हमें, हम ये नहीं बता सकते हैं कि समस्या कहाँ है। लेकिन जो भी आपकी समस्या है जैसा आप बता पा रहे हैं, उसमें आपको नसों और हड्डी दोनों की कमजोरी लग रही है, तो मैं बेस्ट सजेस्ट करूंगा अगर संभव हो तो आप एक बार आरोग्यम केयर हॉस्पिटल आके दिखा सकते हैं।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए डॉक्टर।

0: साहब, आप गठिया के बारे में कुछ कह रहे थे।
1: जी, मैं यही कह रहा था कि यूरिक एसिड अगर शरीर में जितनी हम आज के डेट में फास्ट फूड ले रहे हैं, नॉन वेज डाइट ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो जितना बनता है उतना अगर एक्सक्रीट ना हो, मतलब शरीर से बाहर ना निकले, तो कहीं ना कहीं स्मॉल जॉइंट्स में।
0: इसी बीच हमारे साथ हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर।
2: नमस्ते सर, डॉक्टर साहब।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपकी समस्या क्या है?
2: हमारा मेरा नाम महेंद्र यादव है, हम गोविंदपुर गदरा से बोल रहे हैं।
0: जी, अपनी समस्या बताइए। अपनी समस्या के बारे में बताइए।
2: तो हाथ में ना ये मोटा वाला उंगली है ना?
1: जी सर।
2: तो बायां साइड का?
1: जी सर।
2: पांच फिंगर है जो है शुरू वाला मोटा वाला उंगली, अंगूठा वाला?
1: जी सर, बताया जाए ना, समझ रहे हैं।
2: ऊपर मैंने वो हड्डी में बहुत दिन पहले ही चोट लगा था ना, क्या वो हड्डी फूल गया है।
1: अच्छा,
2: दर्द रहता है हर में।
1: सर, आपने अपना यूरिक एसिड चेक कराया है?
2: नहीं, इसका तो कुछ भी नहीं कराया।
1: हाँ सर, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपना एक यूरिक एसिड चेक कराएं और एक एक्सरे करा करके अच्छे हड्डी के डॉक्टर से मिले। अगर हमसे संपर्क करना हो तो आरोग्यम केयर हॉस्पिटल आप आ सकते हैं। जी सर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: मैम, फ्रैक्चर होने पर सबसे पहले इमीडिएटली अगर मैं कहूँ तो आप अपने अच्छे जो भी संपर्क के डॉक्टर हैं उनके पास जाएं और उनसे सलाह लेकर के ही कुछ करें, क्योंकि समटाइम्स हमें ये मिस्टेक होता है कि नहीं ये तो मुचक गया है, नहीं ये तो मांसपेशियों का चोट है।
0: काफी दिन तक लोग रुक जाते हैं, तो वो सूजन को कैसे कम किया जाए?
1: नहीं, सूजन आने से पहले हम ये समझते हैं कि सिर्फ मांसपेशी है और उस चक्कर में जो हड्डी सिर्फ टूटी होती है वो टूट के अपने जैसे छिटक जाती है।
0: जी, इसी बीच हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर जी, हमारा संपर्क अभी टूट गया है, हम अपनी बातचीत को जारी रखते हैं।
1: तो जैसा मैं बता रहा था कि अगर हम अपनी तरफ से ना उसमें कुछ छेड़छाड़ करें तो ज्यादातर फ्रैक्चर अपने आप यूनाइट होती है, प्लास्टर में ठीक हो सकती है, सिर्फ हमारी छेड़छाड़ की वजह से हमें उसे ऑपरेशन करना पड़ता है।
0: हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो डॉक्टर।
3: हेलो डॉक्टर।
0: हेलो डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपकी क्या समस्या है? अपनी समस्या के बारे में बताइए।
3: समस्या ये है कि घुटना में थोड़ा दर्द जैसा रहता है, दाहिने में थोड़ा ज्यादा है।
1: कितने दिनों से ये दर्द रह रही है दीपक जी?
3: ये करीब करीब दो महीना से हुआ, इसमें इलाज भी कराया थे, थोड़ा कम बेसी होता है, एक्चुअली ठीक नहीं पा रहा है।
1: सर, आपने इलाज कराया होगा तो आपको बताया गया होगा कि या तो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस बन रही है या फिर आपको कैल्शियम की कमी है या विटामिन D3 की कमी है, ऐसा कुछ बताया गया था?
3: कैल्शियम का दवा दिया था।
1: अच्छा सर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर संभव हो तो आप एक बार किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से या तो मेरे पास आरोग्यम में आके दिखा लें या किसी से संपर्क करें, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सिर्फ कैल्शियम देने से ठीक नहीं हो सकती है।
3: तरह का वो दवा दिए थे।
1: जी सर।
3: तो बाया पैर में थोड़ा सा कमी कम है, दाहिना में थोड़ा है, कभी कम होता है कभी फिर हो जाता है।
1: सर, वही मैं कह रहा हूँ कि इसे अगर अर्ली स्टेज में ट्रीट करें तो इसे रोका जा सकता है, नहीं तो ये बीमारी गंभीर होने पर भी हम लोग सुनते हैं कि उनका घुटना बदलना पड़ा, उनको ऐसी तकलीफें होती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग उसने इलाज को गंभीरता से लें।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या हर घुटने के दर्द में ऑपरेशन ज़रूरी होता है?
1: बिल्कुल नहीं मैम, अगर हम सही समय पर सही इलाज करें तो हो सकता है कि हम उस बीमारी को वहीं रोक सकते हैं
0: बिना ऑपरेशन के। और कब हमें ये देखना चाहिए कि ऑपरेशन ज़रूरी है?
1: मैम, ऑपरेशन बहुत लेटर स्टेज में अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते रहें तो ही ऑपरेशन की नौबत आती है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखते हैं। बुजुर्गों में हड्डियां जल्दी कमजोर क्यों हो जाती हैं?
1: मैम, बुजुर्गों में हड्डियां कमजोर होने का एक ही प्रायः कारण

0: है आपका
1: जी,
0: मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वेजिटेरियंस के लिए
1: जी,
0: हाई प्रोटीन डाइट्स आपको लेनी चाहिए
1: जी जी। तो आजकल फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या है ये महिलाओं में बहुत देखने को मिल रही है।
0: मैम फ्रोजन शोल्डर महिलाओं और पुरुषों में दोनों में देखने
1: दोनों
0: को मिल
1: में
0: रही है। ये मैंने जैसा पहले भी डिस्कस किया था कि ये बेसिकली डायबिटीज के पेशेंट का लोड बढ़ रहा है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर का लोड बढ़ रहा है। एक फ्रोजन शोल्डर के 100 में से 90% मरीज सिर्फ डायबिटीज के होते हैं।
1: तो क्या ये बिना डायबिटीज के भी देखने को मिलता है?
0: बिना डायबिटीज के भी देखने को मिलता है, उनमें देखने को मिलता है जिनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से सेडेंटरी है, जो अपना ओवरवेट है, जो उनका मोटापा ज्यादा है और जो अपने शारीरिक कार्य को बहुत स्थिरता से करते हैं।
1: इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए?
0: इसका उपचार एक है, वो है डेली आप एक्टिविटीज में अपने एक्सरसाइज ऐड करें
1: जी,
0: तो उससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी
1: जी। आपने सही कहा
0: जी।
1: बच्चों और युवाओं के लिए कौन कौन से व्यायाम अच्छे हैं जो उनके हड्डियों को मजबूत करेंगे?
0: मैम एरोबिक्स बहुत अच्छे हैं, दौड़ना भागना और उसके बाद आप सारे जितने भी आपके जोड़ हैं उसके मूवमेंट के जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं
1: जी जी,
0: वो सारा आपके लिए हड्डियों के लिए बेहतर है, हड्डियों के जोड़ों के लिए बेहतर है
1: जी। डॉक्टर साहब कमर दर्द और सर्वाइकल दर्द में क्या अंतर है?
0: मैम कमर दर्द आपके पीठ के नीचे के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं
1: जी,
0: और सर्वाइकल दर्द आपके गले के आसपास के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं
1: जी।
0: दोनों में दूसरा ये फर्क है कि सर्वाइकल आपका सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, आप जो बैठे रहते हैं उसकी वजह से होता है, जहाँ की लोअर बैक पेन जो कमर दर्द हम
1: सिडेंट्री मतलब एक ही जगह पर बहुत
0: हाँ,
1: समय
0: जिनका
1: तक
0: डेस्क जॉब है
1: बैठे रहना।
0: विद्यार्थी हुए जिनका डेस्क जॉब है उनके लिए
1: जी।
0: और कमर का दर्द उनमें देखा जाता है जो ज्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं
1: जी,
0: जो कि भारी सामान ज्यादा उठाते हैं
1: जी,
0: उनमें ज्यादा।
1: तो जिम में अक्सर जो एक्सरसाइज करने आजकल के युवा जाते हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: उनको सबसे पहली सावधानियां ये बरतनी चाहिए कि अच्छा जिम ट्रेनर
1: जी,
0: जो कि उनको प्रॉपर पोस्चर के बारे में बताए
1: जी जी,
0: नहीं तो वहीं पे प्रॉब्लम डेवलप करती है
1: जी। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है सर। क्या मोटापा जोड़ों के दर्द से संबंधित है?
0: 100%
1: जी,
0: क्योंकि आपका जो वजन है वो आपके जोड़ों पे ही जाता है
1: जी,
0: तो जब ज्यादा मोटापा होगा तो जोड़ कहीं ना कहीं बहुत जल्दी खराब होते हैं
1: जी। मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा उपयोग गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर क्या असर डालते हैं?
0: वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक कॉज है, क्योंकि हम ज्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं और उसकी वजह से हमारे ज्वाइंट में डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होते हैं
1: जी। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, और इसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं, कौन से एक्सरसाइज हैं?
0: मैम हम जॉब तो नहीं चेंज कर सकते, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप एक फ्रिक्वेंट इंटरवल पे एक ब्रेक लेकर के
1: जी जी,
0: और अपने नेक एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें सो दैट कि उसकी मांसपेशियां स्ट्रांग रहे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस कम हो
1: जी। डॉक्टर साहब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो चलना भी नहीं शुरू किए होते उनमें उनको उनकी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाया जाए?
0: मैम अगर उनका डायट्री सही रहे, मदर्स उनको सही खान पान दें, तो बच्चों में हड्डियां कमजोर होने का और कोई कारण नहीं
1: जी,
0: जिसकी वजह से अगर उनका अनुवांशिक कुछ ऐसा नहीं है तो वो कमजोर नहीं होंगी
1: जी। तो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए हमें?
0: मैम पहला तो है कि हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज में एरोबिक्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट वियरिंग में होनी चाहिए, और दूसरा अच्छा खान पान रखना चाहिए
1: जी। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी श्रोताओं। आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हमने जाना कि मजबूत हड्डियाँ और स्वस्थ जोड़ बेहतर जीवन की मजबूत नींव होते हैं। थोड़ी सी सावधानी, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सही समय पर सही इलाज हमें कई गंभीर समस्याओं से बचा सकता है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक का, जिन्होंने सरल और सहज भाषा में हमारे श्रोताओं के सवालों के उपयोगी जवाब दिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: साथ ही हम धन्यवाद करते हैं उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने फोन कर इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया, इसी संदेश के साथ कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राकेश रमन और विवेक आदित्य, कार्यक्रम संयोजक राजेश कुमार राय तथा तकनीकी टीम निरंजन कुमार की ओर से आपसे लेती हूं अनुमति। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, नए विषय और नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन में। तब तक के लिए धन्यवाद।

0: हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर्स।
0: हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर से पूछिए अपनी बीमारी, तकलीफ और समस्याओं के बारे में। पाइए सही सलाह, जानिए सही इलाज और उचित समाधान। हेलो डॉक्टर, आपका स्वास्थ्य आपकी सेहत को समर्पित आकाशवाणी जमशेदपुर का मासिक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर्स।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आरोग्यम केयर हॉस्पिटल, दयाल सेंटर, शेरे पंजाब चौक, आदित्यपुर।
1: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, पर आरोग्यम केयर हॉस्पिटल है तैयार अपनी 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा और पैथोलॉजी सर्विस के साथ, क्योंकि इमरजेंसी के नाजुक पलों की कीमत समझते हैं हम।
2: हर इमरजेंसी में आए आरोग्यम केयर हॉस्पिटल एट दयाल सेंटर, शेरे पंजाब चौक, आदित्यपुर। आपकी मुस्कान हमारी पहचान।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मासिक स्वास्थ्य लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अरे रे रे रे रे रे। दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी तेरवा आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार।

पलकों की छांव में इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। किशोर कुमार, वंदना शास्त्री और साथियों की आवाजें थी। गुलजार के बोल और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

रानी रूपमती फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, भरत व्यास के बोल थे और संगीत था एसएन त्रिपाठी का। फिल्म गंगा जमुना का ये गीत आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में फिल्म गंगा जमुना का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं शिकारी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने और संगीत जीएस कोहली का है।

0: और श्रोताओं, फिल्म सिकारी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर

0: जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

0: प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहाँ पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहाँ पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहाँ पे रहेंगे, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहाँ पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसमें आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
3: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत में मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होगा। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
0: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया कुछ कारण तो पर्यावरणीय कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहाँ पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
0: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम एक गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें, सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
0: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
2: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिन्ड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हज़ार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का एक कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं,

0: उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देख कर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी है। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पे रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी हैं, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, वो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी, पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
1: जी
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूँ, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लीगेलिटीज अपार्ट, टुडे असमीज is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
2: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तो तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसकी समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी इसकी क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द थीम चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
0: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के

0: लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा, और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा, और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में हैं, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की। इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है, और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरे के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा, तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स, और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी, और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की, और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है, अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है दिन बुधवार, रात के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं साहित्य पत्रिका प्रेमी कार्यक्रमों के लिए साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम स्वर्ण रेखा।

सुवर्ण रेखा। साहित्य में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है साहित्यिक पत्रिका सुवर्ण रेखा में। मैं शिखा खोरी ले चलती हूँ आपको आज की साहित्यिक यात्रा पर। आज के मुख्य आकर्षण है

0: रशीद जहां अनवर की कहानी, कतरा और समुंदर, डॉक्टर संध्या सिन्हा की कविताएं और कलीमुल्ला खां की वार्ता, अकबर इलाहाबादी का रचना संसार। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई पा रहा है, कोई खो रहा है, कोई ताक में है, किसी को है गफलत, कोई जागता है, कोई सो रहा है। कहीं नाउम्मीदी ने बिजली गिराई, कोई बीज उम्मीद के बो रहा है। इसी सोच में मैं तो रहता हूँ अकबर, यह क्या हो रहा है, यह क्यों हो रहा है। अकबर इलाहाबादी की शायरी एक मिसाल है। उन्होंने बेबाक शायरी की और अपने कलम से अपने उद्गार व्यक्त किए। उनकी सोच आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने व्यंग्य रचनाएं की, बोलचाल की भाषा को अपनी रचनाओं में जगह दिया। उनका परिवार धार्मिक था, पर धर्म को हथियार बनाने के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे। तो आइए आज सुवर्ण रेखा की शुरुआत करते हैं कलीमुल्ला खान की वार्ता अकबर इलाहाबादी का रचना संसार से।
1: यूं तो हम सब अकबर इलाहाबादी को उनकी व्यंग रचना के कारण ही जानते हैं, ये किसी हद तक सही भी है, लेकिन देखा गया है कि अधिकतर लोग व्यंग और हास्य में भेद नहीं कर पाते हैं। हास्य का सीधा रिश्ता हंसने और हंसाने से है, जबकि किसी व्यक्ति या किसी समाज में पाई जाने वाली कमजोरियों कमियों की ओर तीखा वार करना व्यंग कहलाता है। इसके पीछे किसी को हीन बताना या समझना नहीं होता, बल्कि उसमें सुधार का पहलू होता है। अकबर ने भी अपनी रचना द्वारा यही काम किया। उनके रचना संसार को समझने के लिए खुद उनके बारे में, उस समय की भारतीय समाज, उसकी दशा, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। अकबर ने जब आंख खोली तो वो गुलाम भारत था। उस समय एक ऐसी बेचैनी थी जो अंदर ही अंदर लोगों के दिलों में खोल रही थी, लेकिन उनके सामने कोई ऐसा मार्ग नहीं था जिस पर चलकर अपनी निजात पाते। आगे चलकर यह बेचैनी 1857 के गदर के रूप में उभरी। हिंदवासियों को इसकी ये सोच थी कि अचानक एक ऐसी हालत पैदा कर दी जाए कि अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन आपसी बिखराव बिना किसी प्लानिंग और किसी मंजिल के अभाव में बुरी तरह से नाकाम हुआ। फिर उसके बाद उसके बदले की भावना से गोरों का दबाव चालू हुआ, उनका दमन चालू हुआ। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब पर एक जैसी विपता पड़ी। पूरे भारत में मायूसी और हताशा की का वातावरण था, और लगभग ये मान लिया गया कि शायद अब हम कभी आज़ाद ना हो सकेंगे। अब हमारी किस्मत अंग्रेजों के हाथों है, हमारी जान माल और आबरू सब कुछ के मालिक वही हैं, हमें उन्हीं के रहमो करम पर रहना है। इन हालात में उनके सामने दोहरा दुख था, एक तो अपने हाथ से सत्ता के निकल जाने का, दूसरे अपने ही देश में दूसरों के गुलाम हो जाने का। अकबर ने ये सारे तमाशे अपनी आँखों से देखे। उनकी आँखों के सामने विश्व युद्ध की तबाही, समाजवाद के नारे, खिलाफत तहरीक की नाकामी, देश भर में फैली मायूसी सब बिखरी पड़ी थी। होता यह है कि कोई भी रचनाकार अपने समय से हटकर या कटकर नहीं रह सकता। अगर वो ऐसा करता है तो अपनी बड़ी जिम्मेदारी को भूलकर सबों के साथ नाइंसाफी करता है। अकबर की ये बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने इन हालात का मातम नहीं किया। ये काम वो बड़ी आसानी से कर सकते थे, लेकिन समय का तकाजा कुछ और था। वो दिलों को भेदना चाहते थे, वो टूटी हुई हिम्मत को जोड़ना चाहते थे, वो मुर्दा दिलों में नई उमंग जगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान मिलकर एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ें, वो नई दुनिया में जीना सीखें, पिछली और गुजरी हुई जिंदगी का अलाप छोड़ें, पढ़ना लिखना सीखें, नए विचारों को अपनाकर विचारधारा में बदलाव लाएं। प्रश्न ये है कि अकबर ने अपनी रचना में इन सब बातों का खुलासा क्यों किया।

0: उनका रचना संसार क्यों इसके इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है और खासकर हास और व्यंग की का सहारा क्यों लिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अकबर ने जिस समय आँख खोली चारों ओर सिर्फ अंग्रेजी ही अंग्रेजी थी, भाषा अंग्रेजी, स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी, न्यायपालिका व्यवस्था सब कुछ अंग्रेजी, थिएटर ओपेरा सारे अंग्रेजी, घर से बाहर सब कुछ अंग्रेजी। ऐसी हालत में दो विचारों का टकराव साफ नजर आता है। अकबर ने इस भेद को महसूस किया और उसी की ओर अपनी रचनाओं में इशारा किया। उनकी रचना संसार के तीन स्तंभ हैं, धर्म, समाज और राजनीति। अकबर इलाहाबादी, जो कि अंग्रेजी राज में सेशन जज थे और अंग्रेजी राज के अधीन काम कर रहे थे, खुलकर कोई बात नहीं कर सकते थे। डर था नौकरी के चले जाने का। यही कारण है कि जो कुछ उनकी धुरी है वो हास और व्यंग के अधीन है। धर्म के नाम पर होने वाले तमाशे, उसकी जकड़, राजनीति का छलावा, धोखा, समाज की तब्दीली, बदलती हुई मानसिकता, इन सब पर उनकी नज़र थी। अकबर का परिवार धार्मिक था, वो खुद भी धार्मिक थे, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि अलग अलग धर्मों में जब तक एकता नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकते। सूफी संतों के परिवार से होने के कारण उनकी सोच आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। सब जानते हुए भी धर्म को हथियार बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी एक पंक्ति है, कसीदे से न चलते हैं न ये दोहे से चलता है, समझ लो खूब कारे हुकूमत लोहे से चलता है। कई धार्मिक कट्टरता नहीं दिखाई देती। अकबर हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्मों के लोगों की अकल पर मातम करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, ऐ ब्राह्मण हमारा तुम्हारा है एक आलम, हम ख्वाब देखते हैं तू देखता है सपना, कहाँ के मुस्लिम कहाँ के हिंदू, भुलाई हैं सबने अगली रस्में, अकीदे सबके हैं तीन तेरा, न ग्यारहवीं है न अष्टमी है, कि आता है वजद मुझको हर दीन की अदा पर, मस्जिद में नाचता हूँ नाकूस की सदा पर। आप देखें उनके कलाम में उम्मीद भी है, मायूसी भी, सुकून भी है, बेचैनी भी। एवज़ कुरान के अब है डार्विन का जिक्र यारों में, जहाँ थे हजरत आदम वहाँ बंदर उछलते। पूछा कि शगल क्या है, कहने लगे गुरुजी बस राम राम जपना, चेलों का माल अपना। अकबर का जुड़ाव राजनीति से कभी नहीं रहा। इसके दो कारण हैं, एक तो वो खानदानी तौर पर सूफी थे, दूसरे अंग्रेजी राज में उनके नौकर थे, लेकिन अपनी आँख खुली रखते थे, सारे उतार चढ़ाव पर उनकी नज़र थी और व्यंग का सहारा लेते हुए उसकी तस्वीर उतारने की कोशिश करते थे। वो भारतीयों को उस हीनता से निकालना चाहते थे जो अंग्रेजों के कारण उन पर हावी हो चुका था। भारतीयों के दिल दिमाग में इस तरह घर कही गई थी कि वो इससे आगे सोच भी नहीं सकते थे और न देख पा रहे थे। ऐसी हालत में अकबर ने उस पर प्रहार किया, उस सोच को तोड़ने की कोशिश की। वो कहते हैं, वो बातें कौमें जिससे हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सल्तनत सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे इतराफ़ दुनिया में, सफ़र सीखो, ख्वासे शुष्क का तर सीखो, उलूमे बेबहर व बर सीखो। अकबर की एक और बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने बाजारी भाषा, उनके शब्दों का प्रयोग बहुत ही अनोखे तरीके से किया। बोलचाल की भाषा, नाम, काम सबको अपनी रचना में जगह देते रहे। अंग्रेजी शब्दों का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया और बिल्कुल अनोखे अंदाज में और नए मानों में उसको पेश किया। उनकी कुछ पंक्तियाँ, कौमी तरक्कियों की ज़माने में धूम है, मर्दाने से ज़्यादा जनाने में धूम है, मिर्ज़ा गरीब चुप है उनकी किताब रद्दी, बुद्धू अकड़ रहे हैं साहब ने ये कहा है, उनसे बीवी ने फकत स्कूल की ही बातें की, ये न बतलाया कहाँ रखी है रोटी रात की, भरते हैं हमारी आह फोटोग्राफ में, कहते हैं फीस लीजिए और आह कीजिए। अकबर की रचनाओं का यही तेवर उन्हें आम भीड़ से अलग करता है और यही उनकी रचना का संसार भी है।
1: अकबर इलाहाबादी का रचना संसार। अभी आप सुन रहे थे कलीमुल्ला खान की वार्ता और अब आइए सुनते हैं डॉक्टर संध्या सिन्हा की कविताएं।
2: कविता है पढ़ना है अम्मा मुझको पढ़ना है, अम्मा मुझको पढ़ना है, अम्मा मुझको बढ़ना है। कचरा चुनने को भगा दिया, छुटकी को संग लगा दिया, मैं भी अफसर बनना चाहूँ, निर्णय अपना लेना चाहूँ, मुझको खुद को गढ़ना है, अम्मा मुझको पढ़ना है। बचपन में मजदूरी करके घर में रोटी पैबंद लाऊं, बचपन में मजदूरी करके घर में रोटी पैबंद लाऊं, बनकर नौकर होटल में क्यों टेबल पोछूं चाय पिलाऊं, पढ़ लिख कर अब लड़ना है, अम्मा मुझको पढ़ना है। हम में क्या कमजोरी अम्मा, हम में क्या कमजोरी अम्मा, हाथ पैर और रक्त भी वैसा, दिल भी वैसा, धड़कन वैसी, दिल भी ऐसा धड़कन वैसी, ना है तो बस पद या पैसा, आगे सीढ़ी चढ़ना है, अम्मा मुझको पढ़ना है। हमको क्यों ये अलग बिठाते, हमको क्यों ये अलग बिठाते, घर के गंदे काम कराते, डांट डपट के हमें डराते, ऊंच नीच का भेद दिखाते, अब मुझको नहीं सड़ना है, अम्मा मुझको पढ़ना है। अपनी इज्जत हक ले आऊं, अपनी इज्जत हक ले आऊं, सब समान है उन्हें बताऊं, रौब के आगे रौब दिखाऊं, प्यार के आगे बिच बिच जाऊं, समझौता नहीं करना है, अम्मा मुझको पढ़ना है, अम्मा मुझको पढ़ना है, अम्मा मुझको बढ़ना है। गजल का शीर्षक है अच्छा लगा, आपकी तीमारदारी में बीमार होना अच्छा लगा, आपकी तीमारदारी में बीमार होना अच्छा लगा, इस बहाने तेरे प्यार का दीदार होना अच्छा लगा। बस चल रही थी जिंदगी, बस चल रही थी जिंदगी गम और खुशी के साथ, बस चल रही थी जिंदगी गम और खुशी के साथ, क्या बताऊं सनम तेरा समझदार होना अच्छा लगा। एहसान तेरे मुझ पर, एहसान तेरे मुझ पर, मेरे तुझ पर चलते रहे, एहसान तेरे मुझ पर, मेरे तुझ पर चलते रहे, खुद को इस तरह तेरा कर्जदार होना अच्छा लगा। शर्मो हया के पर्दे, शर्मो हया के पर्दे, सादगी थी जिंदगानी, शर्मो हया के पर्दे, सादगी थी जिंदगानी, तेरे प्यार का अचके इजहार होना अच्छा लगा, तेरे प्यार का अचके इजहार होना अच्छा लगा, आपकी तीमारदारी में बीमार होना अच्छा लगा। मेरी चाहतों की कूचे में तेरा वजूद हरदम, मेरी चाहतों के कूचे में तेरा वजूद हरदम, तेरी चाहतों की महफिल में शुमार होना अच्छा लगा। फर्ज़ो रस्म की धूप में, फर्ज़ो रस्म की धूप में अब तक हम जलते रहे, फर्ज़ो रस्म की धूप में अब तक हम जलते रहे, दिन ढले सही तेरा तलबगार होना अच्छा लगा, दिन ढले सही तेरा तलबगार होना अच्छा लगा, इस बहाने तेरे प्यार का दीदार होना अच्छा लगा। राहत सुकून दिल और दर्द, राहत सुकून दिल और दर्द, सबके बिछे बाजार यहाँ, राहत सुकून दिल और दर्द, सबके बिछे बाजार यहाँ, शुक्रिया आपका कभी न खरीदार होना अच्छा लगा, शुक्रिया आपका कभी न खरीदार होना अच्छा लगा, इस बहाने तेरे प्यार का दीदार होना अच्छा लगा।
1: अभी आप डॉक्टर संध्या सिन्हा से उनकी कविताएं सुन रहे थे और अब आइए सुनते हैं रशीद जहां अनवर की कहानी कतरा और समुंदर।
3: और यह सब कुछ अचानक ही हो गया, एक भयानक तूफान आया और इसकी जिंदगी के हरे भरे बाग झुलस कर रह गए, हंसती मुस्कुराती दुनिया पल भर में वीरान हो गई। वह इस हादसे के लिए तैयार न था, इसलिए वह तिनकों की तरह बिखरने लगा, लेकिन उसने उस वक्त खुद को बड़ी

खिल से संभाला। जहन को समेटते हुए उसे यह ख्याल सताने लगा कि वह खुद को तो किसी तरह समेटने की कोशिश करेगा, लेकिन बेचारी 3 साल की मासूम सी राहिला माँ की कमी को कैसे कबूल कर पाएगी, कैसे रहेगी वह। उसके लिए तो अब मुझे माँ और बाप दोनों ही बनना पड़ेगा। शहला से उसकी शादी सिर्फ 5 साल पहले ही हुई थी। यह और बात है कि माँ शहला को तकरीबन 7-8 साल पहले ही पसंद कर चुकी थी। चूंकि उसकी जिंदगी में कोई और नहीं थी, इसलिए उसने माँ के कहने पर फौरन ही शहला से शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी गुजर रही थी। नवेद को ट्रेन की सीधी पटरी से ज्यादा घाटी का घुमावदार रास्ता पसंद था, इसलिए जब कभी वह शहला से फलसफियाना अंदाज में बातें करना चाहता था या अदबी लहजे में किसी चीज का इजहार करता तो सीधी सादी शहला उसकी इन फलसफियाना बातों को समझ नहीं पाती। फिर इसे ही वह बातें परत दर परत समझानी पड़ती। ऐसे वक्त में इसे बड़ी ऊब सी होती। माँ की पसंद पर उस वक्त वह चिढ़ जाया करता, लेकिन फिर वह जल्द ही नॉर्मल भी हो जाता। शादी का पहला कैलेंडर उलटते ही राहिला चोर दरवाजे से उसके दिल के कमरे में आ गई। पापा पापा की आवाजों से उसकी जिंदगी चहकने लगी। जिंदगी में एक मकसद आ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ राहिला की नवेद के लिए सब कुछ होकर रह गई। अब सारी खुशियां राहिला के इर्द गिर्द ही सिमटने लगी, और ऐसे में तो ऐसा हो ही जाता है। जिंदगी जब किसी एक ही तरफ सिमट जाती है तो दूसरी तरफ से लापरवाही हो ही जाती है। राहिला नवेद की आंखों पर इस तरह छाई कि शहला दूर होती चली गई। उसकी छोटी बड़ी जरूरतें भी नवेद को नजर नहीं आती। इन सब बातों की वजह से शहला की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। फिर यह हुआ कि शहला की तबीयत बहुत खराब हो गई। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, मगर फिर उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई। दुआओं और दवाओं की कोशिशें भी शुरू हो गई। नवेद परेशान कि क्या हो गया और वह क्या करे कि शहला जल्दी से अच्छी हो जाए और अपने घर लौट आए। इंसान तो जाने क्या क्या सोचता है और चाहता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। और शहला भी एक रात खामोशी के साथ इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। नवेद अपनी मगमूम और फटी फटी आंखों से शहला को दम तोड़ते हुए देखता रहा, और सिर्फ देखता ही रहा, कुछ न कर सका वह। उसकी दुनिया अंधेरे में डूबती रही और डूब गई। उसने सोचा कि आसमान की तरफ निगाहें उठाकर खुदा से सवाल करे कि उसकी जिंदगी में यह अंधेरा क्यों, मेरे साथ ही यह ज्यादती क्यों, नन्ही सी गुड़िया मेरी कैसे रहेगी माँ के बगैर। लेकिन सवाल करने की हिम्मत ना हो सकी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी भी उसकी नहीं है, जिसने जिंदगी दी है उसे वह क्या सवाल करे और कैसे शिकायत करे। वह बहुत देर तक ऐसी ही बातें सोचता रहा, और धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह सवेरे शहला की लाश घर पहुंचते ही अपने पराओं की भीड़ सैलाब की तरह उमड़ आई। सभी की आंखों में आंसू थे, सभी अपने अपने ढंग से गमों का इजहार कर रहे थे। औरतें शहला की अच्छाइयों को बयान कर रही, जहां रो रही थी वहीं मासूम राहिला अपनी प्यारी माँ के सफेद चादर ओढ़े बेसुद लेटी देख कर बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि सारी औरतें आखिर रो क्यों रही हैं। वहीं वह अपने पापा को भी खामोश देख रही थी, लेकिन पापा की आंखों में आंसू नहीं थे। नवेद ने बड़ी मुश्किलों से उन आंसुओं को रोक रखा था। राहिला धीरे धीरे नवेद के पास चली आई और उनकी उंगली थामे सफ़ेद चादर में लिपटी अपनी मम्मी की तरफ इशारा करके कहने लगी, पापा पापा, मम्मी तो सो रही हैं ना, फिर सब लोग रो क्यों रहे हैं। नवेद की आवाज़ दूर से उभर कर आई, पापा कहो ना, चलें पापा मम्मी को उठाते हैं। हाँ चलो आओ। नवेद ने राहिला का जहन उधर से हटाने की कोशिश की और उसे गोद में ले लिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोकने में कामयाब हो पाया। वह सोचने लगा कि अगर राहिला ने उसे रोते देख लिया तो फिर उसके दिल पे क्या गुजरेगी, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख वह कैसे सह पाएगी। इसलिए कुछ भी हो, राहिला के लिए उसे अपने आंसुओं को रोकना पड़ेगा। सूरज सरकता हुआ थोड़ा ऊपर आ गया था। घड़ी की छोटी सुई भी ऊपर उठती हुई 8 के अदद को छूने लगी थी। लोग भी धीरे धीरे और आते गए थे और तादाद काफी बढ़ गई। सारा घर कुछ ही देर में खचाखच भर चुका था। हर आने वाला शख्स नवेद की तरफ तसल्ली के दो बोल उछाल देता और नवेद को फिर से आंसुओं को रोकने की कोशिश करनी पड़ती। उसे डर था कि अगर उसकी आंखों के आंसुओं के सैलाब आ गया तो राहिला उसमें डूब जाएगी। नवेद के ख्यालों में शहला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके साथ गुजरे हुए 5 साल उसके जहन में फिल्मी मंजर की तरह दौड़ रहे थे। सीधी साधी सी शहला, उसकी शरीके हयात शहला, जो कुछ ही देर बाद मनो मिट्टी नीचे दफन हो जाएगी, और वह एक ऐसा बदनसीब शौहर ठहरा
कि उसकी मौत पर एक बूंद आंसू भी नहीं बहा सका। वह जब भी रोना चाहता उसकी नजर राहिला पर आकर टिक जाती और वह सारे आंसू अपने अंदर उतार लेता। पड़ोस के लोग के आने जाने का सिलसिला इसी तरह जारी था। औरतों की भीड़ में उसे तरह तरह के चेहरे दिखाई दे रहे थे, कुछ जाने कुछ अनजाने। अचानक आंगन की भीड़ में उसे एक उदास और रोई रोई सी आंखों वाली लड़की नजर आई, जो सर झुकाए बैठी थी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा और जब उसने अपने आंसू पोंछने के लिए नजरों को उठाया तो नवेद ने उसे पहचानने में देर नहीं की। वह जारा थी। जारा उसके कॉलेज के दिनों की दोस्त थी। बहुत ही प्यारी और जहीन सी लड़की थी। बड़ी बड़ी बोलती हुई आंखें थी उसकी। पड़ोस में ही रहती थी। कॉलेज तक आना जाना दोनों साथ ही किया करते थे और सफर के दौरान दोनों के बीच बातों का ऐसा सिलसिला चलता कि उससे निकलना दोनों के लिए मुमकिन ना होता। बात से बात पैदा करने का हुनर जारा खूब जानती थी। अपनी फलसफियाना बातों के दौरान वह सामने वाले को इस तरह बांधती कि लोग उसकी जहानत की तारीफ किए बिना नहीं थकते थे। उसके बहुत सारे दोस्त उसकी बातों के मद्दाह थे। इससे बातें करते हुए नवेद को भी काफी मजा आता था। खूबसूरत और अदबी बातें नरम नरम सी आवाज में। उसे लगता था कि जारा के साथ किसी खामोश जगह में बैठकर घंटों बातें करता रहे। एक दिन बात ही बात में उसने जारा से कहा था, तुम्हारी बातें बहुत खूबसूरत हुआ करती हैं जारा, इसलिए जी चाहता है कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे सामने बैठा रहूं, जिंदगी भर तुमसे बातें करता रहूं। जब तक तुम बातें करती रहती हो वक्त का एहसास ही नहीं होता। देखना एक दिन हम तुम इसी तरह इसी पेड़ की छांव में बैठे होंगे और एक सदी चुपके से हमारे सामने से गुजर जाएगी। वाकई जारा अगर किस्मत ने साथ दिया और तुम्हारी बातों का सहारा मिला तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। अभी वह ख्यालों की दुनिया में ही गुम था कि किसी ने पीछे से आवाज दी और वह पीछे मुड़ गया। उसे याद आया कि एक बार राहिला की पैदाइश से पहले जब शहला के साथ वह रोमांटिक मूड में बैठकर उसे शेर सुना रहा था तो शेर सुनने के बाद शहला ने कहा था, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं बाजार से लाने वाली चीजों की लिस्ट ले आऊं। और तब उसे बेसाख्ता जारा याद आई थी। उसे लगा था कि उसकी जगह अगर जारा होती तो उसे शेर के जवाब में शेर ही सुनने को मिलता। मगर उस दिन वह खुद को ही कोसता हुआ बाजार की तरफ चला गया और एक चौराहे को पार करते हुए एक तेज रफ्तार कार से टकराते टकराते बच गया। दिल दहलाने वाले इस हादसे से उसकी रूह कांप कर रह गई और जिंदगी की इस चौराहे से, जिस चौराहे के एक रास्ते में उसकी बीवी की लाश गुजरने वाली थी, उसी चौराहे के दूसरे रास्ते पर उसकी दोस्त जारा, खूबसूरत बातों वाली, नर्म आवाजों वाली जारा, जहीन आंखों वाली जारा उससे टकरा गई थी। उसका दिल लरज कर रह गया। उसकी बीवी की लाश जब तक घर में मौजूद है उसे यह सब कुछ नहीं सोचना चाहिए था। अभी तो उस बेचारी को मरे चंद घंटे ही हुए थे कि दूसरी लड़की का तसव्वुर, लोग ठीक ही कहते हैं मर्द मतलब परस्त होते हैं, एक चाय की प्याली टूटी नहीं कि दूसरा सेठ खरीद लाए। तो क्या हुआ, मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं जाता। मुझे अभी अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है और जिंदगी अकेले तो नहीं गुजरती। उसके अंदर एक जंग जारी था। इस जंग में जीत किसकी होगी वह खुद भी नहीं जानता था, लेकिन वह खुद से किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था। माना कि जिंदगी अकेले नहीं गुजरती, मगर तन्हाई की वादियों को आबाद करने के लिए अभी सारी जिंदगी पड़ी है। आखिर वह यह जल्दबाजी क्यों? तुम जैसे मर्दों की वजह से ही देखना कल सारे के सारे मर्द मुफ्त में बेवफा कहलाएंगे। कैसी बेवफाई, जीते जी मैंने उसके सारे हुकूक उसे दिए और अभी भी अमानत में खयानत तो नहीं कर रहा। मौत के बाद अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक मुझे हासिल है। नवेद के दिलो दिमाग में चल रही जंग में आखिरकार जब इसने खुद को जीत से बहुत करीब पाया, तब उसने भविष्य के दर्पण में देखा कि अगर वह जल्द से जल्द पहल करने की ताकत अपने अंदर जमा कर ले तो उसकी बाकी जिंदगी खूबसूरत और रंगीन हो सकती है। अगर जारा उसकी जिंदगी में जीवन के सारे रंग समेट कर शामिल हो जाए तो उसकी दुनिया जगमगा उठती है। कश्मकश की इस अंदरूनी जंग में जब जीत नवेद की हुई और फैसला भी वही हुआ जो उसके दिल ने चाहा था, तब जीत कर भी वह अपने दिल की जमीन पर शहला की लाश के सामने मुजरिमों की तरह खड़ा रहा। सर झुकाए चोर नजरों से कभी खुद को और कभी इधर उधर देखता रहा और खुद से उलझता भी रहा। कुछ भी हो इतनी जल्दी और वह भी इतनी सारी बातें, हर बात का एक मौका होता है। बेमौका बात करना तो जाहिलों की आदतें होती हैं, लेकिन मैं जाहिल नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे बुरे का फर्क जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि एक खुशगवार जिंदगी जब किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना एक अकलमंद आदमी को जेब नहीं देता। इसलिए कोई कुछ भी कहे कुछ भी सोचे, जब दिल का सूरज मेरे इंतजार में है तो रात की तारीकी को क्यों चुनूं?
अचानक उसकी सोच का ताना बाना उस वक्त टूट गया जब उसने दिल में एक डर जागा, कहीं भीड़ में उसके दिल की बात कोई जान न ले। उसके दिमाग

0: जो मर्द अपनी बीवी की मौत पर उसकी लाश को तोहफे में एक आंसू का कतरा भी नहीं दे सका, वह मुझे समुंदर कहाँ से ला कर देगा। ख्यालों में ही शब्दों की जंग शुरू हो गई। नवेद की आंखें मासूम राहिला की परवाह किए बगैर समुंदर बन गई। वक्त की दहलीज पर आंसुओं की ऐसी जोरदार बारिश इससे पहले किसी ने ना देखी थी।
1: कतरा और समुंदर, अभी आप सुन रहे थे रशीद जहां अनवर की कहानी, और ये था आज की साहित्यिक यात्रा का अंतिम पड़ाव। इस अंक के संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। अब मुझे यानी शिखा खोरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम स्वर्ण रेखा अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद रशीद खान का ख्याल गायन, राग है मालकौंस।

शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज इसमें आपने सुना उस्ताद रशीद खान का ख्याल गायन राग था मालकॉन्स। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।